0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और दोस्त, एक उम्र के बाद ना आपके साथ कोई गलत भी करके चला जाता है तो वियर्डली आपको ये समझ में आ रहा होता है कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है। और ये जहां एक तरफ आपके सेल्फ की एक बहुत बड़ी ग्रोथ है, वहीं एक तरफ कभी ना कभी थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो जाता है। जैसे आप जैब गौरी साहब का शेर देखें, कानपुर से हुए जैब गौरी साहब, उनका बड़ा सटीक शेर लगा मुझे। कहते हैं कि जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, मैं भी धोखा खाकर कुछ चालाक हुआ। अब यही बात है, देखिए किस तरीके से जैब साहब ने एक बुरे इंसिडेंट के बाद भी ही टुक अ लर्निंग आउट ऑफ इट एंड ही सेज कि जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, मैं भी धोखा खाकर कुछ चालाक हुआ। अब वही है यार, हर कोई अपने नजरिए से सही है और किसी के नजरिए से गलत। बहरहाल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल। स्वागत है आपका, यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. La vipa la burka. Mirchi, burka.
2: Mirchi.
3: It's Navid.
2: बोल रहा हूँ.
3: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
2: वो आपको मुझे बताना होगा.
3: तो मैं अभी बता दूँ.
2: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
3: संजना.
2: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
3: अपने हस्बैंड का.
2: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
3: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा.
2: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
3: भड़क भी जाते हैं.
2: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
3: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
2: अब्यूजिंग वे में. जैसे कि कैसे?
3: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
2: हूं. ओके चलिए. हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
3: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
2: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का. मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है.
3: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था.
2: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ू कु.

0: Mirchi. It's hot. It's hot. Only on Mirchi. It's hot. Yep,
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
1: Wow, yehi to hai mera dream lehenga.
2: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
1: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
2: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
1: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
3: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
4: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
5: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
2: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all in one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाँ जी, और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आप कताशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर आनंद नारायण मुल्ला साहब से। बिल्कुल जी, 1901 से 1997 तक इनका जीवन काल रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, लोकसभा के सदस्य भी रहे। एंड आनंद नारायण मुल्ला साहब का एक बड़ा ही मेरा पसंदीदा शेर है, कहते हैं कि जब दिल में जरा भी आस ना हो इजहारे तमन्ना कौन करे, जब दिल में जरा भी आस ना हो इजहारे तमन्ना कौन करे, अरमान किए दिल ही में फना अरमान को रुसवा कौन करे। अब वो अरमान बताने से क्या फायदा जो मर गए, है ना, वो और बेइज्जती होगी उन अरमानों की कि अरे अच्छा ये भी सोचते थे क्या तुम, ओहो कभी सोचते थे कि रोल्स रॉयस खरीदोगे, अरे समझ गया यार कभी रोल्स रॉयस नहीं खरीद पाऊंगा, मैंने वो अरमान मार दिया है। जब दिल में जरा भी आस ना हो इजहार तमन्ना कौन करे, अरमान किए दिल ही में फना अरमान को रुसवा कौन करे। ये थे आनंद नारायण मुल्ला साहब। और समझ रहे हैं एक समय की जो गंगा जमनी तहजीब थी, क्या नाम भी है इनका, आनंद नारायण मुल्ला। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका दाशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
2: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और मेरे एक बड़े अजीज शायर हैं, लखनऊ से हैं, मैं जानता भी हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कमर अब्बास कमर उनका नाम है। और उनका एक शेर है जो मेरे जहन में इतने वक्त से अटका हुआ है कि मैंने बोला आज आपको सुनाना तो बनता ही है ना। रात के बारे में शेर है, रात ही हो रही है तो नजर है आपके। कहते हैं कि हमारी रात का एक वक्त तय है जिसमें हमारी रात का एक वक्त तय है जिसमें हम तमाम बिछड़े हुओं को बुलाने लगते हैं। आय हाय हाय हाय हाय। हमारी रात का एक वक्त तय है जिसमें हम तमाम बिछड़े हुओं को बुलाने लगते हैं। इससे तो मुझे वो शेर याद आता है यार कि कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। आए हाय। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। मिर्ची महफिल बरकरार है, कारवां स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे आज का ताशी अनप्लग्ड आपको और ये जो गजल है भाई साहब ये हरिहरन साहब की गाई हुई है और मेरे जहन पे इस तरीके से ये चिन्हित हो गई है, अंकित हो गई है, जज्ब हो चुकी है मेरे दिल में ये गजल इस तरीके से, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे गजल। बेसिकली जैज का इस्तेमाल गजल के साथ किया गया है एंड इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स कि दो जॉनराज को किस तरीके से साथ में मिलाया जा सकता है। This is called ये आईने।

बने रहे अपने ताशी के साथ सिर्फ मिर्ची महफिल पर. और आपको अगर और गजलें सुननी हो और नगमे सुनने हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर. मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप. इट्स

0: on Mirchi. It's hot.
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरुदेव।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
4: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
8: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और कभी कभी ये लगने लग जाता है इश्क के मामलों में कि यार सब कुछ किस्मत के ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि आप किसी को प्यार बहुत करते हैं लेकिन वो भी नहीं टिकता। किसी को आप अगली बार सोचते हैं कि उतना प्यार तो नहीं करूंगा, लेकिन जिसके साथ ये सोचते हैं उसके साथ कई बार जिंदगी बिता लेते हैं। अंजुम रहबर साहिबा का शेर है, कहती हैं कि मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था। आए हाय हाय हाय। और हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे शख्स बिल्कुल रहे होंगे जिनसे मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था। तभी माँ कहती थी ना, ज्यादा मत हंस, अभी रोएगा। कुछ वैसा ही सा सबक दे रहा है ये शेर भी। बहरहाल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. La fiat bala burka. Mirchi burka.
3: Hello.
4: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
3: क्या हो गया
4: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
3: क्या हुआ, क्या है
4: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
3: कब दिया था आपने?
4: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
3: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
4: चंद्र फोन लेके आ,
3: डिस्प्ले आ रहा है।
4: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार?
3: फोन आ रहे हैं और ओके।
4: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
3: बेल बज रही है।
4: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार? ये
3: अरे आपने लिया कहाँ से था?
4: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
3: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
4: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
3: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
4: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते,
3: थोड़ी ना
4: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
3: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
4: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
3: तो आप हमें फोन कर, हमें गुब्बारे वाले से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
4: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
3: फोन थोड़ी ना होते
4: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
3: फोन मत करिए,
4: यहाँ फोन मत करिए यार।
5: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
3: हेलो
5: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने छोटा सा मजाक किया आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
3: अरे सर काम का टाइम है, आप
5: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
3: कुकड़ू कु।
5: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: कविता कॉर्नर
1: कि आपका ताशी आज के कविता कॉर्नर में सुनाए आपको लीलाधर जगूड़ी साहब की एक बड़ी सुंदर कविता। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, इंस्टाग्राम हो गया जो, इसमें लोग अपना अच्छा वक्त डालते हैं, अपना अच्छा टाइम डालते हैं, खुद के साथ जो अच्छा होता है केवल वो ही दिखाते हैं, बुरा नहीं दिखाते। लेकिन कई बार जो दूसरा इंसान होता है वो जब इससे स्क्रॉल कर रहा होता है, उसको लगता है यार सबके जीवन में तो इतना मजा हो रहा है, मेरे ही जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, है ना। तो उसी के ऊपर काइंड ऑफ ये कविता है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, वैसे ही लीलाधर जगूड़ी साहब ने लिखा कि जब घाटी से देखा सुंदर दिखता था शिखर, जब घाटी से देखा तो सुंदर दिखता था शिखर, अब शिखर पर हूं तो ज्यादा सुंदर दिखती है घाटी। अपने से बाहर जहां से भी देखो दूसरा ही सुंदर दिखता है। तो दोस्त इसीलिए दूसरों की सुंदरता, दूसरों के अच्छे वक्त से विचलित ना हो। ये सब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, जिंदगी में ज्यादातर लोग अच्छी बातें बताते हैं, जो बुरा हो रहा होता है अपने साथ वो छुपा ले जाते हैं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: It's 9:30 PM. Mirchi Time Check brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. Best quality, best price.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से।
1: क्या आप कताशी पलटे अपनी डायरी के सफे और कर दे आपके नजर। और आज मैं आपको बताऊं बेसिकली हुआ क्या, इंस्टाग्राम पे मैंने कोई स्टोरी लगाई है ना, और किसी शख्स का मेरे वो स्टोरी लगाने के 5-10 मिनट बाद किसी शख्स का एकदम कॉल बज गया मेरे फोन पे, है ना। मैंने फोन उठाया, मैंने बोला हेलो, तो वो शख्स कह रहा है कि अरे यार तुमने अपने स्टोरी पे मुझे ऐसा ऐसा कहा, इतना ही, अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, ये वो दुनिया जहान, है ना। मतलब मैंने ना वो अपने ख्याल को व्यक्त कर रहा था बस मैं उस स्टोरी के थ्रू, है ना, और वो कोई रील थी, नॉर्मल सी। लेकिन कई बार ना लोग जिस चीज के लिए गिल्टी होते हैं वो जूता खुद ही पहन लेते हैं, है ना। तो इससे मुझे मजरू सुल्तानपुरी साहब का शेर याद आया कि जफा के जिक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए। जफा मतलब अन्याय, जुल्म, है ना। जफा के जिक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए, तुम्हारी बात नहीं बात है जमाने की। लिटरली यही कह रहे हैं वो कि भाई साहब मैं तो ऐसी बात कर रहा था, तुम क्यों इतना इफेक्ट कर रहे हो, लग रहा है कि जूता फिट हो रहा है तुम्हारे पैर में। अगर फिट हो रहा है जूता तो पहन लो और अपने आप को बेहतर बनाओ। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और कुछ लोग होते हैं जिनकी परछाई आप अपने जीवन से नहीं निकाल पाते, चाहे जितना आप चाह लें, चाहे जितना आप कोशिश कर लें, लेकिन वो शख्स जो आपके साथ जुड़ा था एक वक्त पे, जमाना उसकी परछाई आपके ऊपर से नहीं जाने देता। शारिक कैफी साहब मेरे बड़े पसंदीदा शायर हैं और उन्हीं का एक शेर है, कहते हैं कि फासला रख के भी क्या हासिल हुआ, फासला रख के भी क्या हासिल हुआ, आज भी उसका ही कहलाता हूं मैं। वाह जी वाह। अब यही तो बात है कि आप तो दूरी बना लें, लेकिन अगर बातें जो बाहर चल रही हैं उसमें आपको उन्हीं का कहा जा रहा है तो उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता, है ना। फासला रख के भी क्या हासिल हुआ, आज भी उसका ही कहलाता हूं मैं। बहरहाल मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Ya bana.
2: Burka, burka. La vieja bala burka.
3: Mirchi, burka.
4: Mirchi.
5: It's Navid.
4: बोल रहा हूँ।
5: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप वो लूप के लिए क्या करना पड़ेगा?
4: वो आपको मुझे बताना होगा।
5: तो मैं अभी बता दूँ?
4: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
5: संजना।
4: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
5: अपने हस्बैंड का।
4: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
5: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
4: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
5: भड़क भी जाते हैं।
4: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
5: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
4: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
5: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
4: हूं। ओके चलिए।
6: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
5: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
6: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी। अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
4: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और अगर एक शेर है जो मेरी पर्सनालिटी को परफेक्टली डिस्क्राइब कर सकता है मेरे ख्याल से, तो वो होगा इरफान सिद्दीकी साहब का ये शेर। कहते हैं कि सर अगर सर है तो नेजों से शिकायत कैसी। तो नेजों होते हैं जो वो भाले नहीं होते हैं जिसमें सर ऐसे गाड़ दिया जाता है, वो मतलब है इनका वहां पे। कहते हैं कि सर अगर सर है तो नेजों से शिकायत कैसी, दिल अगर दिल है तो दरिया से बड़ा होना है। आए हाय हाय, मतलब दोनों तरफ ऑन बोथ स्पेक्ट्रम्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। क्योंकि सर गुमान की बात होती है ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं वाली बात होती है ना, और दिल प्यार का पैमाना होता है ना। तभी सर अगर सर है तो नेजों से शिकायत कैसी, दिल अगर दिल है तो दरिया से बड़ा होना है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हाँ जी, एंड जस्ट लाइक दैट वक्त हो चला है मेरे जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपके ताशी था आपके साथ, वक्त हो चला है मेरे जाने का, इट्स टाइम फॉर मी टू गो। लेकिन ऑफ कोर्स बिना ताशी अनप्लग्ड दिए आपको कैसे जा सकता हूं मैं। तो आज की जो गजल है, हरिहरन साहब की गजल है, गजल का नाम है ये आईने से, और जैज को किस तरीके से जब गजल के साथ मिलाया जाए तो क्या क्रिएट होगा, इसका बड़ा ही उम्दा, बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है ये गजल। नजर है सिर्फ आपके लिए ये आईने से।

वन ऑफ हरिहरन साहब फाइनेस्ट क्रिएशंस आई मस्ट से। अगर ऐसी गजलें सुनना आपको पसंद हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, मिर्ची ताशी MIRCHITASHI के नाम से आपको मिल जाऊंगा। वहां भी मैं गजलें गा के डालता ही रहता हूँ। स्टे ट्यून टू मिर्ची। मिर्ची महफिल का सफर इस बार का यहीं तक था। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

बिल्कुल सही लिखा है आनंद बख्शी साहब ने। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, किसी को किसी से कभी भी प्यार हो सकता है भाई। जैसे मुझे हो गया, पिछले हफ्ते मैं सुनील दत्त साहब के बारे में इतना पढ़ रही हूँ, उनकी पुरानी फोटोज देख रही हूँ, मुझको प्यार हो गया उनसे, थोड़ी थोड़ी नरगिस जी से जेलसी भी हो गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। क्या चार्मिंग, ऑनेस्ट, हम्बल, काइंड, हैंडसम बंदा था यार वो। आई एम मैनिफेस्टिंग दिस काइंड ऑफ मैन इन माई लाइफ। तो सुनील दत्त का रियल नेम वॉज बलराज, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की तब वेटरन बलराज साहनी एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर थे, तो उन्होंने अपना नाम सुनील कर लिया। अब सुनील हो या बलराज, व्हाट्स इन अ नेम, कहा था शेक्सपियर ने। हाँ, गुलाब को किसी भी नाम से बुला लो, उसकी खुशबू तो वही रहेगी। मैंने ना सुनील दत्त साहब को स्क्रीन पे पहली बार देखा था जब रंगोलिया चित्रहार में ये गाना आ रहा था। फिल्म छाया, सलिल चौधरी का कॉम्पोजिशन, राजेंद्र कृष्ण ने गाना लिखा है, लता मंगेशकर, तलत महमूद की आवाज। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो, दिमाग खराब कर रखा है, रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
4: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है, क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
4: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
4: फोटो बहुत अच्छा है, क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
4: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ, आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है,
4: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन, आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
4: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
4: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
4: लेंस लगाया नहीं
3: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
4: गायब
3: नहीं। मैं कल को
4: फोटो खींचे,
3: अरे लेंस ऐसे
4: पूरे
3: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार,
4: गायब हो जाएगी
3: शेरवानी, तुमने गायब करी है यार मेरी।
4: नहीं सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
4: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
4: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
4: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
4: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
4: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
4: सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
4: कहाँ होता है बताइए।
0: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
2: इट पटा।
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: only on 92.7 FM Radio Mirchi New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani jeans charu ke saath sirf mirchi par.

पता नहीं मुझे आज तक ये जोक क्यों अच्छा लगता है कि एक बार एक क्लास में एक टीचर बच्चों को बोलती है कि बच्चों आपको पता है बंदर हमारे पूर्वज थे, तो एक बच्चा बोलता है मैम आपके होंगे हमारे तो जमींदार थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती। ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत के एक जमींदार थे दीवान रघुनाथ जी, उनकी वाइफ कुलवंती देवी और तीन बच्चे। बड़ा बेटा बलिया जब 5 साल का था इन 1934 रघुनाथ जी नहीं रहे तो परिवार को उनके बड़े भाई यानी कि बलिया के ताऊजी ने संभाला। फिर 1948 में जब देश का पार्टीशन हुआ तो रघुनाथ जी के एक दोस्त याकूब ने पूरे परिवार को यमुना नगर के पास एक गांव में सेफली शिफ्ट होने में मदद की। कुछ साल बाद परिवार का बड़ा बेटा जो अब करीब 21 साल का हो गया था पढ़ाई और नौकरी के लिए बॉम्बे शिफ्ट हुआ, जहां उसने जो सोचा भी नहीं था एक बेहतरीन फिल्म करियर उसका वेट कर रहा था। ये बड़ा बेटा बल्या था बलराज, जिसे आज सारी दुनिया सुनील दत्त के नाम से जानती है। लेट दत्त साहब के बारे में बातें हो रही हैं आज पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: परेशानी। जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें। वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सुनील दत्त साहब की लाइफ स्टोरी सो इंस्पायरिंग। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनील दत्त जब 5 साल के थे उन्होंने अपने फादर को खो दिया, फिर 18 साल की उम्र में देश के पार्टीशन जैसा ट्रॉमा भी एक्सपीरियंस किया। यमुनानगर के पास एक गांव में जो अब हरियाणा में है, उनकी पूरी फैमिली जब शिफ्ट हुई तो प्रैक्टिकली उनके पास कुछ भी नहीं था, वो सब खो चुके थे। अपनी मदर और 2 छोटे सिबलिंग्स, एक छोटा भाई एक छोटी बहन, उनकी तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करते हुए सुनील दत्त 1950-51 में बॉम्बे शिफ्ट हो गए काम करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। जय हिंद कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू की और साथ में बस कंडक्टर की जॉब भी, और इसके बाद जो उनको जॉब मिली उससे उनके लिए फिल्मों के द्वार खुल गए। करते हैं उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद, राइट हियर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है.
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
4: पुरानी जीन्स विद चारू.

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: प्यार या पंजाबी में बोलते हैं निरा इश्क, मतलब सिर्फ इश्क, प्योर इश्क, पक्का इश्क, निरा इश्क था ये बंदा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और बात हो रही है सुनील दत्त साहब की। अर्ली एज में काफी हार्डशिप्स देखने के बाद ये बंदा अर्ली 50s में बॉम्बे पहुंचा, जय हिंद कॉलेज में आर्ट्स की पढ़ाई करनी शुरू की, बस कंडक्टर की जॉब भी की। और अब आते हैं उनकी दूसरी जॉब पर। वो कॉलेज में प्लेज भी लिखते थे, एक्ट भी करते थे। ऐसे ही किसी प्ले में उनको एक ब्रिटिश एड एजेंसी ने नोटिस किया, जो तब एक प्रोजेक्ट के लिए एक वॉइस, एक पर्सनालिटी ढूंढ रहे थे जो बॉम्बे में फिल्म स्टार्स को इंटरव्यू कर सके। ये प्रोजेक्ट था एक रेडियो शो जिसका नाम था लिप्टन की महफिल, ऑन एशिया का ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन। तो दत्त साहब की दूसरी जॉब एक आरजे की जॉब थी, जिसे तब अनाउंसर या रेडियो रिपोर्टर भी कहा जाता था। वाओ, मजा सा आ रहा है सोच के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर।
3: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
2: पवन करे शोर।
3: हाँ

द वेरी चार्मिंग सुनील दत्त साहब की बातें हो रही हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। और मिर्ची, बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने फादर को खो दिया, फिर इंडिया के पार्टीशन जैसा ट्रॉमेटिक इवेंट भी एक्सपीरियंस किया। 20-21 साल की उम्र में वो काम करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बॉम्बे शिफ्ट हो गए। जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई करते करते उन्होंने बस कंडक्टर की जॉब करनी भी शुरू की, और इसके बाद इनकी दूसरी जॉब थी एक आरजे की जॉब फॉर अ शो कॉल्ड लिप्टन की महफिल ऑन एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन। तो बेसिकली उनका काम बॉम्बे में फिल्म स्टार्स को रिकॉर्ड करना होता था। ये रिकॉर्डिंग वो रेडियो स्टेशन पे भेजते थे और फिर उनका शो ऑन एयर होता था, जो एक्चुअली काफी पॉपुलर था। इस शो पर उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को इंटरव्यू किया, इंक्लूडिंग दिलीप कुमार साहब एंड देवानंद। इसी दौरान उनको 2 बीघा जमीन फिल्म का प्रीमियर अटेंड करने को भी मिला, जहाँ उन्होंने पहली बार देखा अपनी बॉलीवुड क्रश को, नरगिस जी को, जो उस टाइम एक एस्टैब्लिश्ड फिल्म स्टार थी और ये एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट। ये कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल ब्रेक। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्र फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है। मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार? ये
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: थोड़ी ना
2: आपने नहीं बताया आपको पहले?
1: आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: थोड़ी ना
2: आपने नहीं बताया आपको पहले? पहले

0: भाई साहब प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने छोटा सा मजाक किया ऐप के साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है,
0: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
0: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नाम है उनका सुनील दत्त, जिनकी बातें हो रही हैं आज पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची। सो अर्ली 50s में कॉलेज में पढ़ाई करते करते सुनील दत्त साहब ने बस कंडक्टर की जॉब की, फिर उनको रेडियो सलोन में एक आरजे की जॉब, एक शो होस्ट करने की जॉब भी मिल गई, जहाँ वो बॉम्बे में फिल्म स्टार्स को इंटरव्यू करते थे। इस शो का नाम था लिप्टन की महफिल। ये शो इतना पॉपुलर हुआ, उनका काम इतना पसंद किया गया कि उनको एक और शो होस्ट करने को दिया गया, जिसका नाम था फिल्मी खबरें, जहाँ पे उनको सौरव फिल्मी रिपोर्टर के जैसे काम करना था। तो ऐसे ही वो एक दिन 1953 की शिकस्त मूवी के सेट पे पहुंचे, जिसे रमेश सहगल डायरेक्ट कर रहे थे। और दत्त साहब से बात करते करते सहगल साहब ने उनको कहा कि क्या तुम फिल्मों में काम करने में इंटरेस्टेड हो? तो दत्त साहब ने भी मजाक मजाक में कहा, जी इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन सिर्फ तभी जब मुझे हीरो लिया

जाएगा। सहगल साहब ने कहा ठीक है तुमको हीरो ले लेते हैं, एक तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट कर लेते हैं। स्क्रीन टेस्ट के लिए दिन वगैरह भी तय हो गया, लेकिन दत्त साहब बहुत नर्वस थे। इसके बाद क्या हुआ करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। राइट, मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आए, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

द वेरी चार्मिंग सुनील दत्त साहब और उनकी लाइफ स्टोरी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो अर्ली 50s में दत्त साहब पढ़ाई कर रहे थे और जॉब भी कर रहे थे, रेडियो सलोन रेडियो स्टेशन में एक आरजे की जॉब। इसी जॉब में जब वो 1953 में स्टिल इन कॉलेज ही वॉज, शिकस्त फिल्म के सेट पे गए तो फिल्म के डायरेक्टर रमेश सहगल ने उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया। और जिस दिन दत्त साहब को स्क्रीन टेस्ट के लिए जाना था वो बहुत नर्वस थे। टेस्ट के लिए पहुंचे तो उनको जो कपड़े पहनने को दिए गए वो दिलीप कुमार साहब के कपड़े थे, जो दत्त साहब को काफी छोटे पड़ गए। उनको अपना अपीयरेंस बहुत नहीं लग रहा था और इससे वो और नर्वस हो गए। किसी तरह से डायलॉग वायलॉग बोलकर वो वहाँ से भाग गए और पलट के सहगल साहब से बात ही नहीं की। कुछ टाइम बाद सहगल साहब का असिस्टेंट उनको उनके कॉलेज में ढूंढता हुआ आया और उसने कहा कि भाई चलो, तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था। और जब सहगल साहब ने दत्त साहब को उनकी पहली फिल्म ऑफर की तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि मैं पढ़ाई पहले पूरी करूंगा। ये सुन के सहगल साहब ने उनको गले से लगा लिया और बोला कि भाई तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है, तुम पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद फिल्म शुरू करेंगे। ये थी 1955 की फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म। यहाँ से गाड़ी आगे कहाँ बढ़ी करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on

सुनील दत्त साहब की फिल्मी जर्नी मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस जर्नी की शुरुआत हुई थी 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म नाम की मूवी से। इस रेलवे प्लेटफॉर्म से जो गाड़ी निकली तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन पे पहुंची, विच वॉज मदर इंडिया इन 1957, जिसने सुनील दत्त को एज दिस प्रॉमिसिंग एक्टर एस्टैब्लिश कर दिया। उनकी परफॉर्मेंस एज दिस बागी बच्चा बिरजू तो कमेंडेबल थी ही, उस टाइम के हिसाब से इस तरह का रोल करना जिसमें कुछ नेगेटिव शेड्स भी हो, ये बहुत बोल्ड था। इस इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिल्म ने उनकी प्रोफेशनल लाइफ को तो बूस्ट दिया ही, उनकी पर्सनल लाइफ भी सेट कर दी। इसी फिल्म के सेट पे उनका और नरगिस जी का इश्क हुआ था ना, जिसके बारे में हम बड़े प्यार से आराम से अगले आर में बात करेंगे। वैसे जैसे ही दत्त साहब की लाइफ में लेडी लक आया, उनकी तो निकल पड़ी। 1960s सुनील दत्त साहब का गोल्डन पीरियड था, जहां उन्हें अलग अलग तरह की फिल्में, रोल्स मिले, अवार्ड्स मिले, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने और उस टाइम के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर बने। ही वॉज अ स्टार। इस टाइम दत्त साहब का चार्म पीक पर पहुंचा विद हिज अडोरेबल परफॉर्मेंस एज भोला इन पड़ोसन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

आज पुरानी जीन्स पर हम मिल रहे हैं दत्त साहब यानी कि सुनील दत्त की लाइफ एंड फिल्मी जर्नी से। मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची। देखिए वैसे तो दत्त साहब को बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, लेकिन अलग से अवार्ड्स की बात करें तो उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला 1964 में उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म मुझे जीने दो में उनकी परफॉर्मेंस के लिए, जहां पे उन्होंने एक डाकू का रोल निभाया था जिसे सच्चा प्यार सुधार देता है। फिर 1964 में उन्होंने एक बहुत ही यूनिक फिल्म बनाई थी यादें। ये इंडिया की पहली फिल्म थी जिसमें एक सिंगल एक्टर था, दैट वाज सुनील दत्त। उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस भी की थी, डायरेक्ट भी की थी। इस फिल्म में जो बाकी के किरदार दिखाए गए थे ना, वो सिर्फ आवाजों के द्वारा दिखाए गए थे। इस फिल्म का नाम सिर्फ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही नहीं दर्ज किया गया बल्कि इसे उस साल बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 1968 में सुनील दत्त साहब को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1995 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2005 में मरण उपरांत दादा साहेब फाल्के अकेडमी द्वारा फाल्के रत्न अवार्ड भी मिला। 1965 में एक फैमिली ड्रामा मूवी खानदान में एक डिफरेंटली एबल्ड बेटे का किरदार निभाने के लिए भी उनको बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसी फिल्म का गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे। बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने।

0: मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
0: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
0: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
1: दिखाइए
0: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
0: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पकड़ा।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

सादात साहब और नरगिस जी की लव स्टोरी। ओए होए, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इनकी प्रेम कहानी किसी भी फिल्मी प्रेम कहानी से बहुत ज्यादा फिल्मी है। आई एम श्योर आपने सुनी होगी कि मदर इंडिया फिल्म के सेट पे फायर एक्सीडेंट हुआ, नरगिस जी आग में फंस गई और हमारे ये हीरो आग में कूद गए उनको बचाने के लिए। नरगिस जी को थोड़ी सी इंजरीज आई, लेकिन सुनील दत्त को काफी इंजरीज आई। तब 2 हफ्ते तक नरगिस जी ने उनके जख्मों पे मरहम पट्टी की, उनका ख्याल रखा और बस ऐसा करते करते लव, इश्क, प्यार, मोहब्बत हो गया। फिर शादी भी हो गई, 3 बच्चे भी हो गए। लेकिन आपको पता है ये दोनों मदर इंडिया के

0: पहली बार नहीं मिले थे।
1: एक्चुअली उसे मुलाकात बोलेंगे या नहीं, अर्ली 50s में जब दत्त साहब कॉलेज में थे और रेडियो सलोन में एज रेडियो फिल्म रिपोर्टर जॉब भी कर रहे थे, तब वो अपने बॉस के साथ 2 बीघा जमीन फिल्म के प्रीमियर पर गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी बॉलीवुड क्रश नरगिस जी को देखा था। नरगिस जी ने उनको देखा था कि नहीं पता नहीं, लेकिन दत्त साहब तो मेस्मराइज्ड हो गए थे। शायद कस्मे खाने, वादे साथ निभाने, घर बसाने के ख्वाब भी देखने लगे थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
7: Pudani jeans with Charu only.

सुनील दत्त साहब और नरगिस जी की लव स्टोरी बहुत अमेजिंग और इंट्रीगिंग भी है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो नरगिस जी एक सॉर्ट ऑफ डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करती थी। बचपन से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि दत्त साहब एक रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, फिल्मों से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट दत्त साहब ने जब नरगिस जी को 2 बीघा जमीन फिल्म के प्रीमियर पर पहली बार देखा था, तब वो एक एस्टेब्लिश्ड फिल्म स्टार थी और ये एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट जो एक रेडियो स्टेशन के लिए काम करते थे। नरगिस जी तब राज कपूर जी के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसका उनको कोई सुखद अंत नजर नहीं आ रहा था। वो शादी करना चाहती थी, सेटल होना चाहती थी। 1956 में उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर लिया। इनफैक्ट बहुत टाइम के बाद आरके फिल्म्स के बाहर कोई फिल्म यानी कि मदर इंडिया साइन की। ये तो उन्हें करना ही था क्योंकि उन्हें दत्त साहब से जो मिलना था। नरगिस जी ने ये तक कहा था कि अगर दत्त साहब उनकी लाइफ में नहीं आते तो शायद वो अपनी लाइफ खत्म कर लेती। नरगिस जी के चले जाने के बाद एक इंटरव्यू में दत्त साहब ने कहा था कि कई बार हमें लगता है कि वो हमारा अपना जब चला गया उसके बिना हम कैसे जिएंगे, लेकिन जी लेते हैं क्योंकि उसकी यादें साथ होती हैं और उसके साथ जो सपने देखे होते हैं वो पूरे करने होते हैं। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे को डार्लिंग जी कहकर बुलाते थे। हाउ अडोरेबल। हैट्स ऑफ टू दिस लव स्टोरी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga. Milci.
1: It's Navid.
0: बोल रहा हूँ।
1: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: वो आपको मुझे बताना होगा।
1: तो मैं अभी बता दूँ?
0: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
1: संजना।
0: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
1: अपने हस्बैंड का।
0: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
1: फिलहाल अभी कोई दिमाग में नहीं आ रहा।
0: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
1: भड़क भी जाते हैं।
0: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
1: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
0: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
1: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूं।
0: ओके चलिए।
2: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
1: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
2: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
0: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
1: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
0: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है, मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकुड़ुकू। थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पगला।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची का।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी।

0: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करूं.
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.
2: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा. बैक टू बैक गाना सुनेगा. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की प्यास है।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबीज वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
3: हाँ जी।
4: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
4: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
3: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
4: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिया यार, सारे दिमाग।
3: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
4: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
3: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
4: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
3: अरे शर्म की क्या बात है सर,
4: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
3: किसी का
4: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
3: लेंस लगाया नहीं।
4: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
3: गाय
4: नहीं दीदी, मैं कल को
3: फोटो खींचे।
4: अरे लेंस ऐसे
3: पूरे
4: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
3: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
4: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
3: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
4: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
3: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
4: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
3: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
4: गड़बड़
3: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
4: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
3: दिखाइए
4: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
3: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
4: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
3: कहाँ होता है बताइए।
5: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Pepe Mirciu.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La viva la murga. Mirci, murga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या मत तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्रो फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले, फोन ठीक
2: तो
3: नहीं होते,
2: थोड़ी ना
3: तो आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखने चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराई,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है,
4: आप फालतू बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: परेशानी। जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करे, उसके बाद में एक और काम करे, वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करे, फिर से एक काम करे, खूब सारे काम करे, 10 काम करे। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: और सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांट्स में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: इमोशनल स्ट्रेंथ एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने में कैसे मदद करती है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: बहुत बच्चे होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, लेकिन वो एग्जाम का इतना प्रेशर ले लेते हैं कि वो खाना पीना छूट जाता है, सडनली उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जैसा आप कह रहे हैं। तो ऐसे बच्चे को क्या बोला जाए उस वक्त?
4: वही जो बात आ गई कि वो बच्चे होशियार बहुत है ना, तो किस में होशियार है? इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है
3: लेकिन इमोशनली स्ट्रांग नहीं है।
4: अगेन ऑल दिस एंजाइटी, सी घूम फिर करके दिखाई किस में दे रही है? फटीक में दिखाई दे रही है, नोजिया में दिखाई दे रही है, आपको टमी में कुछ हो रहा है, दिखाई वहां दे रही है, एंजाइटी डिप्रेशन में दिखाई दे रही है, पर उसका कारण क्या है? आप हैं इमोशनली वीक। आप इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं
3: लेकिन इमोशनली बहुत वीक हो सकते हैं।
4: हाँ, क्लास के टॉपर भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा कमाने वाले हो सकते हैं,
3: लेकिन फिर भी
4: यू विल कम अक्रॉस पीपल जिनको ये थॉट आ जाता है कि हम सुसाइड कमिट कर लें, या सो यू कैन बी वेरी वेरी इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग येट इमोशनली वेरी वीक, दोनों का कनेक्शन नहीं है। हमें कई बार बड़ा वंडर लगता है, कई बार लोग कहते भी ये तो अपने जीवन में इतने सफल थे, इन्होंने ऐसा कदम कैसे उठा लिया?
3: हाँ, कई बार होता है।
4: वो सफल थे क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, पर वो कदम उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि वो इमोशनली वीक थे। तो उस बच्चे को, एक बच्चा होता है बड़ा आराम, आपने ऐसे भी बच्चे देखे होंगे एग्जाम से एक दिन पहले फिल्म देखकर आते हैं, एग्जाम से पहले सबसे बातें कर रहे होते हैं, बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, वो बच्चे इमोशनली स्ट्रांग है। इसमें ये भी होता है, देखो एक और चीज है, कई बच्चे नेचुरली भी इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं, इवन इफ दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, इवन इफ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो उनकी नेचुरल नेचर भी हो सकती है, वो सोल एम्पावर्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है, then we need to do something about it.
3: शायद मैं वैसा बच्चा था क्योंकि पढ़ाई में वो खास नहीं था, लेकिन एग्जाम में मन तो यही होता था कि फिल्म देख के आऊं, बाहर खेलने जाऊं, लेकिन पापा मम्मी के डर से नहीं करता था। लेकिन आप सही कह रहे हैं, अगर इमोशनली वीक है तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि उनको वहाँ स्ट्रॉन्ग करें।
4: जैसे बॉडी के लिए होता है, कई नेचुरली हेल्दी होते हैं, नहीं भी एक्सरसाइज करते हैं, नहीं भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो भी वो फिट होते हैं,
3: और जो नहीं होते हैं उनके लिए आपको या तो सप्लीमेंट्स लाने पड़ते हैं या फिर आपको दूसरे और तरीके
4: कुछ तो करना पड़ेगा।
3: बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है कि हेलो विशाल और सिस्टर श्रेया, मेरा क्वेश्चन है, मैं अपने काम का स्ट्रेस घर ले आती हूँ, फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, इस हैबिट को कैसे बदलूं? आई थिंक ये बहुत लोगों का सवाल है सिस्टर।
3: काम का स्ट्रेस तो घर पर आना ही है, क्योंकि स्ट्रेस को ये थोड़ा ना पता चलता है कि अभी ऑफिस से घर आ गए, वो तो एक संस्कार बन गए। काम को एंजॉय करना शुरू करें। अगर आपको ऐसा लगता नहीं काम में तो स्ट्रेस जायज है लेकिन घर में खुश रहना है, ये नहीं हो सकता है।
2: सही बात है।
3: स्ट्रेस क्या फीलिंग है? एक पेन की फीलिंग है, डिस्कम्फर्ट है, प्रेशर है। तो आप अगर अपने काम को एंजॉय करेंगे तो आप घर में भी उसी खुशी को लेकर के आएंगे। पर दो इमोशंस अलग नहीं हो सकते कि ऑफिस में तो हम स्ट्रेस्ड आउट रहे, डिप्रेस्ड रहे, एंग्री रहे, और घर आए तो एकदम खुश हो जाए, वो नहीं पॉसिबल।
2: तो एक तो खुश रहो, अपना काम खुशी से करो। दूसरा है, अगर कोई कारण से स्ट्रेस है तो क्या कर सकते हैं?
3: स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज अ फीलिंग। जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, हम कई बार कहते हैं कि स्ट्रेस एक पेन की तरह होता है, एक मैसेंजर है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। आप कहेंगे काम का स्ट्रेस है, कोई कहेगा ट्रैफिक का स्ट्रेस है, कोई कहेगा हेल्थ का स्ट्रेस है, कोई कहेगा रिश्ते का स्ट्रेस है। यही तो ना, बाहर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, उस चीज का प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया। एरिया क्या है? इनर पावर टू कोप।
2: अगर वो बढ़ा
3: देते हैं, जितनी इनर पावर को बढ़ाते जाएंगे, जितना इनर रेजिलियंस को बढ़ाते जाएंगे, उतना एक्सटर्नल फैक्टर का इम्पैक्ट आपके ऊपर कम
2: पड़ेगा।
3: एक्सटर्नल फैक्टर को एकदम खत्म कर देना
2: पॉसिबल नहीं, आपके हाथ में नहीं।
3: हम में से किसी के हाथ में भी नहीं। हम कहें कल से हम मुंबई में उठे, ट्रैफिक ही नहीं हो, सड़कें बिल्कुल खाली हो, मेरा बॉस गुस्सा ही नहीं करे, और डेडलाइन टारगेट तो हो ही नहीं स्कूल में, इट्स नॉट पॉसिबल।
2: तो इनर पावर बढ़ाएं।
3: हम वैसे कोशिश प्रेशर हटाने की करते हैं, पर कहां तक हटाएंगे? आज आप जैसे स्कूल में, हम पहले भी बात कर रहे थे, हमने एग्जाम हटा दिए, कहां तक हटाएंगे? अब पढ़ाई तो नहीं छोड़ देंगे ना।
2: तो इनर पावर को बढ़ाएं। आई थिंक कई बार अगर आपने स्ट्रेस्ड को अंग्रेजी में लिखा है तो उसको रिवर्स जब पढ़ते हैं तो डिजर्ट्स स्पेल करता है। तो आप इनर पावर को डिजर्ट्स की तरह खाएं और स्ट्रेस को दूर भगाएं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बच्चों से बात करने का सही और असरदार तरीका क्या है, आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: अब सिस्टर, एक जहां बच्चे आते हैं ना, वहां पे पेरेंट्स की बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कई बार मैंने देखा है कि जो कॉन्वर्सेशन होती है, कुछ देर पहले हम कॉन्वर्सेशन की बात कर रहे थे कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें, टीचर्स अपने बच्चों से बात करें, कई बार वो कॉन्वर्सेशन पॉजिटिविटी से शुरू नहीं होती है। हर पेरेंट ये चाहता है कि ये पॉजिटिवली एंड हो ये कॉन्वर्सेशन, लेकिन वो शुरुआत जो है वो पॉजिटिवली नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारे में यही प्रॉब्लम है। अब जब बिगिनिंग ही नेगेटिव से हो या बुराई से हो तो उसका अंत पॉजिटिव होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चा भी अब सडनली डिफेंस मैकेनिज्म उसका किक इन कर गया है।
2: Absolutely.
4: तो बच्चों के साथ बात करने का सही तरीका ये हर आदमी को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हो नहीं पाता। ये एक संस्कार कहीं ना कहीं बन जाता है कि पहले हम सामने वाले की बुराई निकालते हैं और फिर हम चाहते हैं कि उसको हम शिक्षा दें ताकि वो ठीक हो जाए।
5: शिक्षा भी बहुत क्षमा के साथ देनी होती है। हम तो यही सीखते हैं कि शिक्षा दो, भले शिक्षा दो, वो भी अगर आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हो। सबको तो शिक्षा नहीं देनी चाहिए, पेरेंट हैं, टीचर हैं, बॉस हैं, आपका फर्ज है शिक्षा देना। लेकिन क्षमा भाव क्या होता है कि जो कमी आपको उसके अंदर दिखाई देती है उसके प्रति आप डिस्टर्ब्ड नहीं है, उसके प्रति आपके मन में नेगेटिविटी नहीं है। और कॉन्वर्सेशन नेगेटिवली शुरू करना तो एक चीज है, कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले कितना हम नेगेटिव सोच
4: लेते होते हैं। हाँ, राइट।
5: वो डिफेंस मैकेनिज्म क्यों किक होता है, क्योंकि पहले ही आप ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसको कितना भी समझा लो ये तो समझता ही नहीं है, पता नहीं क्या करे, जेंजी ऐसा है, फलाना है, फलाना है, तो यू हैव ऑलरेडी, दिस इज ऑल्सो कॉन्वर्सेशन
4: जो उस तक पहुंच रहा, क्योंकि
5: वाइब्रेशन कॉन्वर्सेशन पहुंच गया। नाउ यू सिट विद देम टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, फिर आपने नेगेटिवली शुरू किया तो आपने तो डिप्लीट कर दिया। नाउ यू वॉन्ट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कैसे होगा, हो ही नहीं सकता।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सुदीप पुणे से लिखते हैं कि मैं एक वेंडर हूं और मेरे एक क्लाइंट बहुत रूड बिहेव करते हैं, ऐसे काम करवाना चाहते हैं जो हमारे स्कोप ऑफ वर्क में ही नहीं है, ऐसे में मैं क्या करूं, और जब लोग आपकी ऐसे में क्या करें जब लोग आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाएं या आपको इंसल्ट करें, अपनी गुडनेस को कैसे प्रोटेक्ट करें बिना नेगेटिव हुए, क्योंकि क्लाइंट है तो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते हैं।
5: ना हमें ज्यादा उनको कुछ बोलना है और ना हमें उनके बारे में ज्यादा सोचना है
4: जी।
5: हमें जब हम गुड होते हैं या हम किसी एक क्वालिटी के साथ काम करते हैं तो वो उनके लिए नहीं कर रहे होते
4: जी, अपने लिए कर रहे होते
5: हैं। हाँ, क्योंकि वो करने में हमें सुकून मिल रहा होता है।
4: बहुत बढ़िया बात कही आपने।
5: अगर हम किसी को ट्रस्ट करते हैं, हम किसी से डिग्निटी से बात करते हैं, हम किसी के साथ काइंड है, हम किसी का गलत नहीं करते, तो हम उन पर थोड़ी ना फेवर कर रहे हैं।
4: हमारा संस्कार है वो।
5: जो अच्छाई है वो हमने अपने जीवन के लिए चुनी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अच्छाई से मेरा अच्छा भाग्य बनता है।
4: बिल्कुल।
5: तो आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो जब कोई सही तरीके से बात नहीं करता है, तो वो उसका कर्म है, वो उसके संस्कार है। ये भी समझना चाहिए वो दर्द में है, दुखी है। हम बार बार ये चीज कहते हैं कि अगर कोई सही तरीके से बिहेव नहीं करता है तो वो बहुत शक्तिशाली नहीं है।
4: वो तो ठीक है, लेकिन सिस्टर वो कह रहे हैं कि हमारा स्कोप देखो, पैसे मुझे 5 मिलने हैं, लेकिन आप काम मुझसे 10 का करवा रहे हो, पेमेंट भी उसके नहीं दे रहे हो, और मुझसे ऐसा काम करवा रहे हो जो मेरे स्कोप ऑफ वर्क में भी नहीं है, ये करना ही नहीं मुझे।
5: रह सकते हैं ना।
4: हाँ, लेकिन फर्म रहेंगे तो बोले ठीक है दूसरा वेंडर ले आते हैं,
5: तो फिर क्या कर सकते हैं।
4: सही बात है,
5: आप खुद बताएं, ऑप्शंस हर चीज में देखने होते हैं। अगर वो आपका स्कोप ऑफ वर्क है ही नहीं, जो चीज मुझे आती नहीं, आप 10 बार भी मुझे कहें करने के लिए, तो मुझे कहीं तो फर्म होना ही पड़ेगा ना कि दिस इज समथिंग दैट आई कांट डू और आई एम नॉट कंफर्टेबल, ये मुझे आता ही नहीं है। तो हम रूड नहीं होते, उनको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, किसी के अवगुण है। अभी ये भी एक ऐसा हो गया है कि हम एक दूसरे के अवगुण को कॉपी कर रहे हैं, ईंट का जवाब
4: पत्थर से देंगे
5: क्यों। वो रूड है, 10 बार भी रूड हो, 20 बार भी रूड हो, आप अपनी बात कहें, 10 बार कहें, 20 बार कहें, असर्टिव होकर के कहें, फर्म रहें, लेकिन आपको उनके अवगुण को उठाने की
4: सही बात। वो रूड बने तो आप डूड बनिए और आप बोलिए ठीक है भाई हमसे नहीं हो पाएगा।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पेरेंट्स और बच्चों के बीच मजबूत रिश्ता इतना जरूरी क्यों होता है, आइए इसके इमोशनल रीजन समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो आप देखते हैं कि चुप चुप रहते हैं, शेयर करना बंद कर देते हैं एक्सेट्रा। तो एक तरीका, मेरी एक दोस्त है, वो एक स्कूल में प्रिंसिपल है, तो कहती है कि मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि जब भी आपको ऐसे बच्चों के साथ डील करना हो तो 3-4 सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादातर जो पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि यार हमारा बच्चा बात करना बंद कर दिया, वो हमारे साथ कुछ शेयर नहीं करता। तो कहती हैं कि थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि भाई तुम्हारा दिन कैसा रहा, जिसका कोई आंसर दे ना चाहे नहीं चाहे, आप एक लेवल नीचे जाइए, आप पूछिए कि भाई पिछले साल के मुताबिक इस साल तुम्हारे स्कूल में क्या फर्क हुआ कंपैरेटिवली, तो शायद वो कुछ एक जवाब दे पाएगा, क्योंकि आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप बहुत स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। फिर बोलते हैं कि भाई इस वक्त तुम्हें कौन से सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं, तो शायद उसके पास जवाब होगा। फिर कहते हैं कि आज तुमने लंच पे किसके साथ, हु डिड यू हैंग आउट विद टुडे, तो शायद एक स्पेसिफिक जवाब मिले। और तुम्हारे असाइनमेंट किस तरह से चल रहे हैं अभी, तो कहीं ना कहीं आप उसको एंगेजमेंट में इनक्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चा अगर खुल के इस तरह से बात करने लग गया और ये चेंज उसमें आ गया, बजाय इसके कि आप पूछे भाई आज तुम्हारे दिन में क्या हुआ, चांसेस है कि बच्चा आपसे बात करना शुरू कर देगा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पॉजिटिवली इन्हेंस करना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि तुम यार ऐसे क्यों बात करते हो, तुम्हारे दोस्त कितने बुरे हैं, तुम्हारे बाल ढंग के नहीं हैं, तुम अपना बैग सही जगह पे नहीं रखते हो। आप एंगेज करेंगे कॉन्वर्सेशन में तो शायद बच्चा आपसे शेयर भी करना शुरू कर देगा।
4: वर्ड्स की पावर तो होती है ना, आप किस प्रकार के शब्द यूज करते हैं उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस प्रकार के शब्दों से बात करते हैं, लेकिन अगेन एक बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। जो ये वाली बात है ना कि उस बच्चे ने बात करनी क्यों बंद कर दी, उस बच्चे ने बात करनी बंद इसलिए करी है क्योंकि उसको कई बार नेगेटिव रिएक्शंस मिले।
3: बिल्कुल,
4: अगर जो बच्चा बहुत रूड हो जाता है, जो बच्चा बहुत चुप हो जाता है, इट इज ड्यू टू लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस।
3: बिल्कुल,
4: ऐसे तो नहीं हो सकता ना।
3: हाँ।
4: अब ठीक है, आप तरीका बदल लीजिए, थोड़ा बहुत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन तरीके के साथ साथ मन बदलिए।
3: हाँ, वो बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है सिस्टर श्रेया, क्योंकि तमाम घरों में आज ये हो रहा है, ये एक एक्सेप्शन टू द रूल नहीं रहा है, ऑलमोस्ट एक रूल हो गया कि हर घर में जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं पेरेंट से दूर हो रहा है। हम कई बार उसको हार्मोनल इम्बैलेंस कह देते हैं, ग्रोइंग अप कह देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूरी जो है वो अभी अभी आने लग जाती है, और ये बहुत जरूरी है कि हम एक बॉन्ड डेवलप करें अपने बच्चों
4: साथ। कई बच्चे होते थे ना घर में है, जॉइंट फैमिली है, तब पता नहीं चलता था। अब एक एक बच्चा है, सारा दिन आप उसी बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, पेरेंट भी बहुत इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तो वो भी बच्चे की चिंता किए जा रहा है। एक ही बच्चा है, उसकी चिंता किए जा रहा है, सो लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी जाती है, साइलेंस में ही वो बॉन्ड खत्म हो जाता है। बॉन्ड ही तो है ना, बॉन्ड कैसे बनता है, इट्स एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी जब प्योर एक्सचेंज होती है तो बॉन्ड स्ट्रांग होने लगता है। वहीं पर वो चिंता है, फियर है, अंदर में एंगर भी है, वो बॉन्ड खत्म होने लग जाता है, उसको समझ ही नहीं आता। अब कई बार पेरेंट चाइल्ड बैठे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि बात
3: क्या करें,
4: क्या करनी है। लेकिन जब आपको पता होता है कि सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करता है, जज नहीं करता है, मैं कोई भी बात कर सकता हूँ, इनका प्यार मेरे प्रति कम नहीं होगा। इनकी फीलिंग्स मेरे प्रति चेंज नहीं होगी, यू विल टॉक।
3: बिल्कुल,
4: यू वांट टू टॉक।
3: हाँ बिल्कुल, बच्चा तो बात करना चाहता ही है।
4: घर में देख ले, कभी कभी फादर से नहीं करता, मदर से करता होगा, कभी कभी मदर से नहीं करता, फादर से ही करता होगा, तो बात तो कर रहा है ना। पर वहाँ पता है कि रिएक्शन मिलेगा, या बाद में अपसेट हो जाएंगे, या बाद में जज करेंगे, या मेरी बुराइयां किसी के साथ करेंगे, या खुद बहुत दर्द में चले जाएंगे, फिर इनको रात को नींद नहीं आएंगी, फिर इनकी हेल्थ खराब हो जाएंगी। सो मच गोज इन योर माइंड, से बात ही नहीं करते।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
1: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
3: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
4: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
3: Renew?
4: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
3: What better way to celebrate than with something timeless?
4: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुँच गए। इट्स अ जर्नी, चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है श्रेया घोष से, बैंडल यानी कि बंगाल में है ये। वो लिखती हैं कि सिस्टर, क्या आप प्लीज बता सकती हैं कि मैं अपना फोकस कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ती हूँ और उसके बाद मेरा ध्यान भटक जाता है, फालतू बातें सोचने लगती हूँ, जैसे स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, मम्मी ने क्या बोला, फ्रेंड्स ने स्कूल में मेरे साथ कैसा बिहेव किया, वगैरह वगैरह।
2: फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अगेन एक स्ट्रॉन्ग माइंड की निशानी है। जब आपका मन शक्तिशाली है, शक्तिशाली मन किसको कहते हैं, मुझे जो सोचना है, जितना समय सोचना है, अपने मन को जहाँ लगाना है मैं लगा सकता हूँ।
1: जी,
2: मेरा मन मेरे कंट्रोल से चलता है।
1: जी,
2: कमजोर मन का क्या हो गया, वो आपको कंट्रोल कर रहा है।
1: हाँ।
2: कह रहे हैं मेरा मन।
1: हाँ।
2: मेरा मन कहते, तेरा मन तो नहीं कहते ना, मेरा मन कहते।
1: हाँ।
2: तो मैं मन का मालिक होना चाहिए।
1: हाँ।
2: लेकिन मन मेरा मालिक बन गया।
1: सही बात है।
2: अब उसको जहाँ जाना है, जो सोचना है, वो कर रहा है।
1: वो कटी पतंग की तरह कहीं भी जा रहा है।
2: कहीं भी जा रहा है। एंड यू लूजिंग टाइम, यू लूजिंग फोकस, यू लूजिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब अपने मन को कैसे शक्तिशाली बनाए वो देखते हैं। दो तीन चीजें। एक, आपका मन क्योटिक रहेगा अगर आप बहुत इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं।
1: जी,
2: वो नॉइजी हो जाएगा, वो नहीं कॉन्सेंट्रेट कर सकता। ये चीज बहुत समझने की, हमें लगता है हमें बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ पता होना चाहिए, तब हम बहुत इंटेलिजेंट होंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आप बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर के उस मन को प्रोसेस नहीं कर पाता।
1: सही बात है।
2: वो भी एक मशीन की तरह है, उसको भी उतनी इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे डाइजेशन है, पेट है। आप कितना भी हेल्दी खाना खिला दो,
1: सही बात है, लेकिन अगर ज्यादा खाया तो फिर वो तो इंडिजेशन तो हो गया।
2: हाँ, मैंने जैसे कोई कितनी भी अच्छी चीज हो, पानी है,
1: सही बात है,
2: बहुत अच्छा है,
1: लेकिन ज्यादा पीने पे बीमारी हो,
2: ज्यादा पीने पर बीमारी होगी। सिमिलरली फॉर इन्फॉर्मेशन, आप देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, गाने हैं, फिल्म्स हैं, न्यूज है, इतना इतना इतना अंदर ले रहे हैं, द माइंड डजंट गेट इनफ टाइम टू प्रोसेस,
1: राइट,
2: दैट्स व्हेन थोड़ी देर के बाद वो उस प्रोसेस करने में चला जाता है।
1: सही बात है।
2: जो आपने सुना है वो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में चला जाता है। दैट इज वन थिंग। सेकंड चीज है, थोड़ा मी टाइम निकालना चाहिए टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो आपके फ्रेंड्स ने कहा या किसी ने कुछ कहा। कोई चीज अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप अगर उसको एनालाइज करके, उसको वर्क करके, उसको क्लोजर नहीं देते
1: तो चलता रहेगा,
2: तो वो चलता रहेगा, फिर वो पास्ट बन जाता है। फिर हम कहते हैं ना कि 80% टाइम तो हमारा मन या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। क्यों? आपने उसी दिन उसको लेट को नहीं किया।
1: जी।
2: उसको क्लोजर नहीं दिया, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया, अपनी हीलिंग नहीं करी। सम 20 मिनट्स, 10 मिनट्स जर्नलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा मी टाइम। दिस इज जस्ट अ बज वर्ड, मी टाइम। है क्या मी टाइम? मी टाइम इज बेसिकली स्पेंडिंग दैट टाइम विद यू एंड हीलिंग योर सेल्फ। कुछ भी नेगेटिव है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, उसको आप करें तो आप प्रेजेंट में रह पाएंगे और फोकस।

0: कर पाएंगे. एंड थर्ड, ट्राई एंड स्टडी इन द मॉर्निंग.
1: हाँ, ये आपने पहले भी कहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं.
0: नहीं, बच्चे थके हुए मन से पढ़ रहे
1: हैं. हाँ, सुबह सुबह आपकी एनर्जी भी हाई होती है, डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, बहुत खूबसूरत समय होता है.
0: थका हुआ मन कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा? थका हुआ मन मना आप सुबह उठे, समझो आप लेट उठे, फिर 6-8 घंटे तो आजकल बच्चे क्या करेंगे, ये देख लिया, फ्रेंड्स के साथ चले गए, स्कूल कॉलेज में चले गए, अब रात को 8 बजे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं.
1: मन थका हुआ,
0: थका हुआ मन फोकस और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है.
1: सही कह रही
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: रिचार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पेरेंट्स को रिजल्ट से ज्यादा बच्चों की मेहनत और कोशिशों की तारीफ क्यों करनी चाहिए, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अभी हाल फिलहाल में शायद मई 2025 की बात है, कर्नाटका के एक पेरेंट ने अपने बच्चे के फेल होने पे एक पार्टी दी, क्योंकि वो उसको बताना चाहता था कि मैं ये अपने बच्चे को नहीं बताना चाहता कि सिर्फ सक्सेस सेलिब्रेट किया जाता है, मुझे ये बहुत जरूरी है उसको बताना कि फेलियर को सेलिब्रेट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सक्सेस और फेलियर आपकी जिंदगी के मापदंड नहीं है, और वो इसको समझाना बहुत जरूरी है। तो बच्चे के बारे में अगर आप उसको उसका एफर्ट प्रेस करेंगे बजाय इसके कि आप उसके रिजल्ट को प्रेज करेंगे, आई थिंक ये सीख जो है ये एक बाप माँ बाप ही दे सकते हैं और तो कोई नहीं दे सकता। ये बहुत
4: थोड़ा डिटैच भी होने की जरूरत है। मेरा बच्चा परफेक्ट होना चाहिए, मेरे बच्चे के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेरा बच्चा कभी फेल नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है।
3: हाँ, और मेरा बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में ऐसा क्यों है, कंपैरिजन भी नहीं होना चाहिए।
4: कंपैरिजन तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए,
3: लेकिन अक्सर होता है, हर घर में होता है।
4: सिंबल नहीं है मेरा बच्चा, कोई मेरी पहचान नहीं है, आजकल वो कितना प्रेशर है, कौन से स्कूल में वो पढ़ता है वो मेरा स्टेटस सिंबल है, उसको उसमें पढ़ना है कि नहीं, आई वॉन्ट हिम टू स्टडी देयर बिकॉज सो दैट आई कैन शेयर इट विद पीपल कि वो वहाँ पढ़ता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: Type-C cable ke saath phone to charge kar loge. Khud ko kaise charge karoge? Mirchi Recharge Mornings, subah 6 se 8. Only on Mirchi, it's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है। हेलो विशाल एंड सिस्टर श्रेया, मैं अभिषेक माध्यमिक शिक्षक हूँ। पिछले 3-4 महीनों से जब सुबह उठ रहा हूँ, एक आलस सा मन में बना रहता है, जिससे मैं ना तो मॉर्निंग वॉक पर जा पा रहा हूँ और ना अपना काम कर पा रहा हूँ। डेली कोशिश कर रहा हूँ इस उपद्रव से लड़ने का, लेकिन ये आलस मुझे इस उहापो में थका दे रहा है। ब्रह्म कुमारी श्री श्रेया जी से मेरा अनुरोध है कि इस अंतर द्वंद से मैं कैसे मुक्ति पाऊँ।
3: सुबह उठने के जब बात आती है तो कई बार मुझे ऐसा आजकल महसूस होता है कि हम सोते बहुत लेट हैं और सुबह जल्दी उठना चाहते हैं।
2: हाँ, ये बात भी है, और उस पे हम सोचते नहीं कि हम जल्दी क्यों नहीं उठ पा रहे हैं।
3: मना कई बार हमें जल्दी उठने के जगह जल्दी सोने की मेहनत करनी चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा है कि अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप उठ ही जाएंगे। किसी के लिए 6 घंटा, किसी के लिए 7 घंटा मैक्सिमम होता है। तो एक चीज ये है कि ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं कि हम 12-1 बजे सोएं और फिर 6 बजे उठ जाएं, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो जल्दी सोने की कोशिश करें। सेकेंडली ये हो सकता है कि कभी कभी हमारा जब उठने का मन नहीं करता है, तो वो ये भी हो सकता है कि हमारे जीवन में जब कोई चैलेंज चल रहा होता है, कोई स्ट्रगल चल रहा होता है, सो वी डोंट वांट टू फेस इट, तो वो नींद प्यारी लगती है, वो सोए रहना प्यारा लगता है। पर उसमें अपने मन को समझाना कि जीवन उतार चढ़ाव है, ये जो चैलेंज है, वैसे भी आप देखें हमेशा जब कोई चैलेंज होता है, जब कोई प्रॉब्लम होता है, लगता तूफान है, होता तोहफा है।
2: अरे वाह, क्या बात है।
3: लगता तो तूफान है, लेकिन वही चीज हमारे अंदर की रेजिलियंस है, सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस है, वही चीज तो बढ़ाता है। सो जो भी चीज है उसको फेस करें, उससे भागे नहीं, उससे किनारा नहीं करें। नींद वो चीज है जो किनारा करना, मतलब इसलिए डिप्रेस्ड भी व्यक्ति क्यों होता है, डिप्रेशन वाले व्यक्ति को से भी सुबह नहीं उठा जाता। लेजीनेस कई बार, देखो ये समझना ही पड़ेगा, सिचुएशनल होता है। आप देर से सो रहे हैं इसलिए हैं, आप किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं इसलिए हैं, आप डिप्रेस तो नहीं है। डिप्रेशन का भी एक लक्षण क्या है, वो लगता लेजीनेस है पर होता डिप्रेस्ड है। यू जस्ट डोंट वांट टू गेट अप, यू जस्ट डोंट वांट टू फेस द लाइफ। तो जो भी है उसको फेस करें और आगे बढ़ें, उसमें कुछ ना कुछ कल्याण ही है।
2: क्या बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello, good morning. Mirchi Mornings पर मैं हूँ Priscilla, your licensed distributor of Mirchi Dar Energy. चाहे तुम अपनी लाइफ को क्वेश्चन कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या करते हो तुम अपनी लाइफ में, या फिर तुम सुबह सुबह बोलती बंद करके सोचते रहते हो, जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अपने साथ चिपका कर रखो, क्योंकि लाइफ का फंडा सिंपल है. लाइफ में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो तुम्हें कहता है हाँ यार चिल मार लाइफ में, और मैं वही दोस्त हूँ जो तुम्हें चिल और चिली दोनों मोड पर ले आती है, यानी कि मिर्ची के साथ करेंगे हम वाइब. और ऐसे ही नहीं, मेरे पास है गॉसिप गपशप न्यूज अपडेट्स एंड मच मोर. और अभी मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है. और लाइफ का एक सिंपल सा फंडा है यार, हर चीज में डॉलर और रुपीज को एक्सचेंज करना बंद करो, बल्कि अपनी नेगेटिविटी को एक्सचेंज करो पॉजिटिविटी से, और लाइफ को बनाओ सुपर मिर्चीदार. मुझे यानी कि प्रिसिला को फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, इंस्टा और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप कर सकते हो तो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. तो बैठे हो जाके फॉलो करो ना फटाफट से. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Rambala!
1: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: हेलो
4: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई।
3: हाँ जी
4: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
4: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
3: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
4: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार सारे दिमाग।
3: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
4: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
3: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
4: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
3: अरे शर्म की क्या बात है सर,
4: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
3: किसी का
4: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
3: लगाया नहीं
4: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
3: गायब नहीं।
4: कल को अरे लेंस ऐसे
3: पूरे
4: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
3: नहीं सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
4: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
3: नहीं साहब देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
4: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
3: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
4: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
3: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
4: गड़बड़
3: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
4: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है नहीं।
3: दिखाइए
4: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
3: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
4: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
3: कहाँ होता है बताइए।
5: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: मैनू नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जब एक दूजे दे नाल काम ना करे।
10: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
11: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
12: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस योर एंटायर बिजनेस Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
13: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
14: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
15: Chamakte Sitare 2026.
14: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
16: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
18: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
19: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
3: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
0: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग माय मिर्ची फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब चलने वाले हम साथ साथ में एक टाइम ट्रैवलिंग जर्नी पर। आज के दिन क्या हुआ था हिस्ट्री में पता करने। सबसे पहले 1215 इंग्लैंड के किंग जॉन को लोगों ने बेसिकली कहा था, बॉस रूल्स सब पे अप्लाई होते हैं, इवन तुम पर। एंड तब साइन हुई थी मैग्ना कार्टा, मतलब ये हिस्ट्री का पहला टर्म्स एंड कंडीशंस था। एंड फिर हम जंप करते हैं 1667 में, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था। आई मीन जस्ट इमेजिन उस जमाने के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। 1775 में जॉर्ज वॉशिंगटन बिकेम कमांडर इन चीफ। 1864 में आर्लिंगटन नेशनल सेमेटरी स्टैब्लिश हुई थी। एंड 1904 में न्यूयॉर्क में जनरल स्लोकम स्टीमबोट ट्रेजेडी हुई थी, विच इज अ डिफिकल्ट डे इन हिस्ट्री एंड अ रिमाइंडर ऑफ हाउ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफन कम आफ्टर पीपल पुश फॉर चेंजेस। 1924 आया, फोर्ड ने बनाई अपनी 10 मिलियंथ मॉडल टी। तो देखा एक ही डेट पर कितना कुछ हो सकता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग रोमांटिकली बल्कि हिस्टोरिकली। फिलहाल फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय टू सर्व विद योर ब्रेकफास्ट। सो अपेरेंटली लगान वॉज अबाउट टू रिलीज एंड लिरिसिस्ट राइटर लेजेंड जावेद अख्तर साहब ने आमिर खान सर को कहा था, भाई मत करो यार। ही सेड द फिल्म वुडंट वर्क, कॉल्ड द स्क्रिप्ट अट्रोशियस एंड कहा था पीरियड फिल्म्स का जमाना गया। लेकिन इस टाइम पर जो प्लॉट ट्विस्ट हुआ वो बहुत ज्यादा लाउड था। लगान बिकेम आइकॉनिक। रिसेंटली लगान ने 26 इयर्स कंप्लीट किए हैं, लेकिन 26 इयर्स पहले आमिर खान ने कहा था ट्रस्ट मी ब्रो, जावेद साहब ने कहा था नो बेटा नो, हिस्ट्री ने कहा एक्चुअली होल्ड माय क्रिकेट बैट, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। ऑनेस्टली यार, इजंट दैट लाइफ। कभी कभी आइडियाज जो है ना ऑन पेपर बहुत ही वियर्ड लगते हैं, लेकिन उनमें दुनिया बदलने की ताकत होती है, और हमारे देसी एक्सपर्ट्स तो ये सब बहुत अच्छे से जानते ही हैं। वी ऑल जज थिंग्स अ लिटिल बिट टू अर्ली कभी कभी। न्यू सिटी है, न्यू जॉब है, न्यू रूममेट है, न्यू चाय है, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद वी रियलाइज इट्स एक्चुअली नॉट बैड, इनफैक्ट इट्स अ ग्रेट आइडिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर ये है कि ब्लॉकबस्टर्स जो है वो भी स्टार्ट होते हैं कहीं ना कहीं दिमाग में इस आइडिया के साथ, क्या पता ये चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन हमेशा अपनी गट फीलिंग के साथ जाना चाहिए और अपनी सेल्फ बिलीफ को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ हु एल्स विल। तो इसी बात पर एक सवाल मैं पूछती हूँ तुमसे, कौन सी ऐसी मूवी है जिसके रिलीज टाइम पर तुम्हें लगा था ये नहीं चलेगी, लेकिन आगे जाकर ब्लॉकबस्टर हो गई वो? फॉर मी दैट मूवी इज एनिमल। फटाफट से मुझे डीएम करके बताओ इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रिसिला और अब लेकर आ चुकी मैं तुम्हारा मौसम का हाल चाल यानी कि वेदर अपडेट। फिलहाल टेम्परेचर इज सिटिंग एट 66 डिग्री फारेनहाइट, इट्स मोस्टली क्लाउडी, लेकिन हवा जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रामेटिक है एंड हमें फील करा रही है 63 डिग्री फारेनहाइट के आसपास का तापमान। गुड न्यूज ये है कि सनशाइन इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द डे। सो अगर तुमने सुबह सुबह स्काई देखा और बोला अरे यार ग्रे लग रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, आज स्काई एकदम ब्लू रहने वाला है। आज का टेम्परेचर रेंज है 63 डिग्री से लेकर 77 डिग्री फारेनहाइट तक एंड इट विल फील लाइक 61 से लेकर 76 डिग्री फारेनहाइट तक। और कंपैरिजन अगर करें तो कल का हाई गया था 90 डिग्री फारेनहाइट तक एंड आज जाने वाला है 77 डिग्री फारेनहाइट तक बस, यानी कि कल के हिसाब से आज टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम है। रेन रिपोर्ट भी क्लीन है, लास्ट 24 आवर्स में देयर वाज 16 मिलीमीटर्स का रेन एंड अभी अगले 24 आवर्स में 0 मिलीमीटर्स का रेन एक्सपेक्टेड है। सो आज अम्ब्रेला लेकर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अनलेस यू वांट टू मारो सम स्टाइल विद दैट रियली कूल अम्ब्रेला ऑफ योर्स। और अभी बाहर निकलने के पहले SPF 50 ++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, लेयर के प्लेयर बनो और मिर्ची सुनते रहो। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तुम मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। जाकर मुझे फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244। Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: अगर तुम्हारे ब्रेन में 75 टैब्स खुले हुए हैं तो उन्हें बंद करो और अभी सिर्फ ये सुनो मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब लेकर आयो तुम्हारे लिए
2: मिर्ची आवर का 3।
1: सबसे पहले जर्मनी जस्ट मेड फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री, बिकमिंग द हाईएस्ट स्कोरिंग टीम एवर एंड मूविंग पास ब्राजील इन ऑल टाइम वर्ल्ड कप गोल्स। दे ऑल्सो ओपन्ड विद अ 7-1 विन ओवर क्यूरासाओ। बिग मोमेंट टू फॉर क्यूरासाओ, द टूर्नामेंट डेब्यूटेंट्स स्कोर्ड देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप गोल। सो यस, टफ स्कोर लाइन है लेकिन ऑल्सो अ हिस्ट्री मेकिंग डे ऑन बोथ साइड्स। नंबर टू पर, अ रेफरी इन्वॉल्व्ड इन द जर्मनी क्यूरासाओ मैच ब्रॉडकास्ट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड आफ्टर व्यूअर्स रेज्ड कंसर्न्स अबाउट अ हैंड जेस्चर शोन ऑन लाइव टीवी। एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। एंड लास्टली, इलॉन मस्क रिस्पॉन्डेड टू समवन ऑनलाइन सेइंग बिकमिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वाड्रिलियनेयर इजंट इम्पॉसिबल बट अपेरेंटली वुड रिक्वायर फैक्ट्रीज ऑन द मून एंड मार्स। सर, मोस्ट ऑफ अस आर स्टिल कंपेयरिंग ओटमील प्राइसेस एंड डिसाइडिंग व्हेदर गुआक इज फाइनेंशियली responsible or not. That's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me Priscilla. Sun rahe ho to mujhe dekhkar bhi aao. Insta aur X pe mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp pe mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep ¡Me pierdo a la murga! ¡Mirchi Murga!
1: ¿Mirchi?
2: Es Navid.
1: बोल रहा हूँ.
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप वो लूप के लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा.
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
2: संजना.
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का.
1: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई दिमाग में नहीं आ रहा.
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं.
1: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूँ.
1: ओके चलिए.
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी?
2: दिमाग खा रखा है.
3: अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का.
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है. रेडियो मिर्ची पे.
2: गॉड. मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था.
1: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किस दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू. थैंक यू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
8: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
9: Chamakte Sitare 2026.
8: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
10: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
11: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
10: Renew?
11: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
10: What better way to celebrate than with something timeless?
11: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
13: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
14: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
15: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search is tunara, Krishna Jewelers Me, exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
18: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
17: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है.
17: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
7: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
0: मिर्ची फ्रेश माल.
1: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका.

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड स्पोर्ट्स में इंडियन वुमेन किक्ड ऑफ देयर T20 वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन विद अ मैसिव 64 रन विन ओवर पाकिस्तान। फाइनल स्कोर इंडिया 174/6 एंड पाकिस्तान ऑल आउट फॉर 106 इन 17 ओवर्स। और मैच की MVP एनर्जी वॉज दीप्ति शर्मा, बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की और फिर कैजुअली 5 विकेट्स भी ले लिए। मतलब शी डिडंट जस्ट एंटर द शैट, शी आर्काइव did. Also, this is India's biggest ever win over Pakistan in women's T20 history. And speaking of winning, Tanishq is season mein win kar rahe with the festival of exchange because Globe ka season chal raha hai yaar. Jahan pe tumhe offers mein mil rahe hain $5 extra per gram on exchanged gold upon diamond purchases and 0% deduction on exchange of old gold above 9 carats. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। फिलहाल मिर्चीदार गाने आने वाले तुम्हारे लिए, तब तक तुम जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस्य बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स

0: With Priscilla, it's hot.
1: नमस्ते माय दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट मिर्ची। मॉर्निंग्स पर चल रही है मिर्ची योगा क्लासेस, बिकॉज इंटरनेशनल योगा डे इज कमिंग ऑन 21st of June एंड हम यानी कि मिर्ची वाले डिसाइड कर चुके कि हम भी वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं। ग्लोबली योगा डे सेलिब्रेट्स इंडियन प्रैक्टिसेस दैट कनेक्ट्स बॉडी माइंड एंड ब्रेथ एंड दिस ईयर्स थीम इज योगा फॉर हेल्दी एजिंग। नमस्ते, मैं हूँ तुम्हारी गुरु प्रसन्नांदा और आज तुम सीखने वाले हो द फॉरवर्ड विदाउट रीडिंग शवासना। सबसे पहले अंकल ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, साथ में यही मैसेज 470 अदर लोगों को भी भेजा है और साथ में लिखा है फॉरवर्ड दिस टू 10 पीपल वरना 30 डेज का बैड लक मिलेगा। सोर्सेज डबल कोट्स में ट्रस्टेड है। अब स्टेप टू, अपनी सांस खींचे और मैसेज को ओपन करें। स्टेप थ्री, लंबी सांस छोड़े। स्टेप फोर, मैसेज को बिना पढ़े ही डिलीट कर दें। एंड स्टेप फाइव, फोन को साइड में रख कर लाई डाउन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट एंटर्ड शवासना ऑफ फ्रीडम। Alright, feel the guilt leaving your body, feel the notifications reducing and feel your ancestors whisper. Finally, advanced practitioners may also mute the family group for next 8 hours. Remember, yoga is not only for stretching your body, but sometimes yoga is stretching your ability to not reply immediately. Now tell me, what's your funniest accidental yoga pose? Was it laptop nikasana, airport bhagasana, frozen on Zoom mudrasana? Abhi kabhi WhatsApp bhejo mujhe 9033 mirchi par, that's 9033647224, ya phir connect with me at Mirchi Pris on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS. And until next class, breathe in the confidence and breathe out all the doubts. That rhymed. Namaste. Main hoon Priscilla, sun rahe ho Mirchi Morning. Stay tuned and stay home.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
4: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
5: पहले भी मैं
6: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा, विशाल
7: मिश्रा, अमित चेटी ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ, विशाल मिश्रा'स पागलपन टूर, फ्राइडे जून 26th, हार्ड रॉक लाइव, ईटेस अरीना, अटलांटिक सिटी। बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: with Priscilla. It's hot.
1: Hello there. This is Priscilla with you exclusively on Mirchi Mornings, जहाँ पर अब हम सुनने वाले हैं सोना और चांदी का रेट क्या चल रहा है.
2: Raj Jose wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,330. $4,330 पर ट्राई उसके साथ. Gold के prices trade कर रहे हैं और इस साल के lowest trading point पर हैं. Gold अमेरिका में इंडिया से सस्ता है. किस तरह से gold में अमेरिका में invest करते हुए आप अपने पैसे save कर सकते हैं. Raj Jose के team member से connect करें और responsibly gold bars or silver bars 1 ounce 100 gram kilo bars of pam certified aiye raj jewels ke sath gold mein invest kare. Thank you, happy morning.
1: And there you have it, sona chandi ka rate up to date. Main hu Priscilla tumhare sath mein. This is Mirchi Mornings. Fatak se mujhe follow karo Instagram aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is mirchipris, and WhatsApp par connecting number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.
0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings पर Mirchi Hour का 3. सबसे पहले न्यूयॉर्क सेलिब्रेटेड अ हिस्टोरिक बास्केटबॉल चैंपियनशिप मोमेंट, बट सम सेलिब्रेशंस टर्न्ड कियोटिक नियर टाइम्स स्क्वायर. रिपोर्ट्स से अ टीनेजर वाज आल्सो इंजर्ड बाय गन फायर एंड प्रॉपर्टी वाज डैमेज्ड. नंबर टू पर अ यूएस वुमन वेंट वायरल आफ्टर शेयरिंग दैट अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कोटेड अराउंड $1,000 इन अमेरिका रिपोर्टेडली कॉस्ट ओनली $25 in India. And the story sparked conversations online around healthcare, affordability and accessibility. And number three, per Australia's Nishan Welupille became the first Indian origin footballer in 20 years to play at the FIFA World Cup. And that's it for Mirchi Hour ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Abhi mujhe follow karo. Mirchi Pris is my handle name on Insta and X. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्र फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार? ये
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते,
2: थोड़ी ना
3: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर, काम का टाइम है,
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू को।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
12: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
13: Chamakte Sitare 2026.
12: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit IndianicaAcademy.com.
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
16: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
17: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
14: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
18: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
19: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: Listener MI, back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
10: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry.
0: हर ड्राइव बनेगी यादगार।

लेकिन बैटरी को एयरप्लेन मोड में रख लो. स्टॉप कम्पीटिंग विद एवरीबडी एंड एंजॉय पीपल. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक कोरल. लकी नंबर इज 18. टॉरस यानी कि वृषभ राशि. मनी इंपॉर्टेंट है बट हार्ट भी ईएमआई पर नहीं चल सकता है. रोमांस, कनेक्शन और थोड़ी सी सॉफ्टनेस चूज करो ओवर कॉन्स्टेंट अचीवमेंट. लकी कलर इज रोज गोल्ड. लकी नंबर इज 42. जेमिनी यानी मिथुन राशि. पीपल से डू इट प्रॉपरली क्यूट. टुडे योर मैजिक कम्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट थिंकिंग. ब्रेक पैटर्न्स नॉट लॉज. लकी कलर इज aqua blue. Lucky number is 5. Cancer yani karak rashi. Find one quiet moment today. The next step ka answer Google par nahi, tumhare andar chupa hua hai. Samjhe? Lucky color is moon silver. Lucky number is 27. Leo yani ki siha rashi. People are drawn to your vibe today. New connections are possible, but remember, not every exciting person needs permanent access to your calendar. Lucky color is amber gold. Lucky number is 9. Virgo yani kanya rashi. Detective mode on. Look beneath the surface today. Agar koi topic avoid kar raha hai, maybe wahi interesting hai. Lucky color is sage green. Lucky number is 31. And that was Rashi Zone Part 1. Agar tumhare signs abhi tak nahi aaye hain, to thodi si der mein aayenge. Only on Mirchi Mornings. Mera naam hai Priscilla. Mujhe follow karo. Mirchi Pris is my handle name, Insta or Expert. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: परेशानी। जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करे, उसके बाद में एक और काम करे, वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करे, फिर से एक काम करे, खूब सारे काम करे, 10 काम करे। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स

0: It's 10:30 AM. Mirchi time check.
1: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
4: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
3: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
5: अभी न जाओ छोड़ कर।
4: 28 June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
11: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
12: पहले भी मैं तुमसे मिला।
13: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
14: विशाल मिश्रा।
15: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
16: and SaiUSAInc.com.
17: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome back to Mirchi Mornings. मेरा नाम है प्रिसिला और अब आने वाला है
2: मिर्ची राशि जोन.
1: सबसे पहले लीब्रा याने तुला राशि एडवेंचर भुला रहा है. डोंट वेस्ट एनर्जी कन्विंसिंग समवन हु वांट्स कंफर्ट ओवर एक्साइटमेंट. फाइंड योर ओन क्रू. लकी कलर इज सनसेट पीच. लकी नंबर इज 14. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सेफ ऑप्शन या बोल्ड मूव. यूनिवर्स इज लो की पुशिंग यू फॉरवर्ड टुवर्ड्स समथिंग एक्साइटिंग. स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट. लकी कलर इज मिडनाइट प्लम. लकी नंबर इज 8. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, समवन सीम्स क्यूरियस अबाउट यू. रिलैक्स. FBI mode. Not every question is interrogation. Lucky number is 22. Lucky color is cinnamon bronze. Capricorn yani makar rashi, boundaries baby, boundaries. Don't ignore small issues to avoid drama. Future you will file complaints. Lucky color is charcoal blue. Lucky number is 40. Aquarius yani kumbh rashi, pause and ask, is this really what you want? If excitement is gone, permission granted to rethink the plan. Lucky color is Arctic mint. Lucky number is 11. And last but not the least, Pisces, yani ki mean rashi, don't carry the whole world emotionally today. If something feels unfair, connect, speak, build community. Lucky color is lavender mist. Lucky number is 36. And that's it. The stars have spoken and so have I. Ab chalte hain Mirchi Dar Bangers ki taraf. Mera naam hai Priscilla. Sun rahe ho mujhe Mirchi Mornings par. Jaldi se mujhe follow bhi kar lo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianikaacademy.com.
7: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
8: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
9: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
8: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
10: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
8: Moral of the story, number 1 sirf ek hi hota hai.
11: Ek hi hota hai. Radio Mirchi.
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virpa, la burga. Milchi, burga. हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी।
2: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बकवास दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे। बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लेंस कौन सा लगाया नहीं?
2: क्या कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब नहीं।
2: मैं कल को
1: फोटो खींचे।
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसको, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
2: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
8: पहले भी मैं तुमसे मिला।
9: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra. Vishal Mishra.
7: Jetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.

0: Book your tickets at ticketmaster.com and sciusainc.com.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
0: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
0: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
2: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं.
3: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मटेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी.
2: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले.
4: अभी न जाओ छोड़ कर.
3: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
5: अब मिर्ची खा.
7: Radio Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम बॉलीवुड के भक्त लोग अगर MBBS की डिग्री देखेंगे ना तो बोलेंगे हाँ नाइस नाइस, लेकिन अगर मुन्ना भाई MBBS की CD देखेंगे ना तो बोलेंगे अबे ये कहाँ से मिली?
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और मुन्ना भाई वो फिल्म है जिसने जाने कितनों के करियर में फिर से चिंगारी जला दी. स्टार्टिंग विद संजू बाबा, जो इस फिल्म तक गैंगस्टर टाइप रोल्स ही प्ले किया करते थे. उनकी एक इमेज बन गई थी यार, लेकिन इस फिल्म के साथ उनकी इमेज की काया पलट गई. एंड देन कमिंग टू अरशद वारसी, जिनको MBBS से पहले 3 सालों तक कोई फिल्म नहीं मिली थी, और फिर इस मूवी के बाद कॉमिक रोल्स की ऐसी लाइन लगी उनकी लाइफ में कि पूछो मत. और बोमन ईरानी, इस फिल्म के बाद उनका करियर भी गॉट नोटिस्ड. एंड इनफैक्ट राजकुमार हिरानी की भी ये पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर. और किस्मत का खेल देखो, इस फिल्म में विद्धू विनोद चोपड़ा ने पहले संजय दत्त को जहीर का रोल ऑफर किया था, द सेम रोल जो फिर जिमी शेरगिल ने प्ले किया. लेकिन कैसे चीजें बदली, वही तो बात आपको आगे बताऊंगी. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: It's 11:30 a.m. Mirchi time check.
3: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Diamond jewelry ki first choice. RK Jewels. Best quality, best price.
4: Jai Gurudev. Gayatri Chetna Center. Piscataway ki or se. Aap aur aapke parivar ko Guru Purnima evam Rudrabhishek Mahotsav mein snehapoorn amantran. Shanivar 1 August ko subha 10 baje Shivji Rudrabhishek aur sham 5 baje Virat Deep Yagya. Ravivar 2 August ko subha 10 baje 251 kundiya Gayatri Mahayagya. Shanti Kunj. Haridwar ke Pujya Santo द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव. अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
5: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स.
6: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu. Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SciUSAInc.com.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: संजय दत्त को मुन्ना भाई MBBS के लिए जहीर का रोल ऑफर किया गया था और मुन्ना भाई का रोल ऑफर किया गया था शाहरुख खान को।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। लेकिन किस्मत का खेल कुछ यूं था कि शाहरुख खान की नेक की सर्जरी के चलते ही हैड टू से अ नो टू द फिल्म, एंड देन विद्यू विनोद चोपड़ा ने संजू बाबा को लीड रोल के लिए मूवी ऑफर की। हालांकि संजय दत्त वाज एप्रिहेंसिव टू डू द मूवी सिंस उन्हें उस टाइम पर डॉन और गैंगस्टर के रोल्स ही ऑफर हो रहे थे, बट सुनील दत्त साहब आस्क्ड हिम टू डू द फिल्म एंड ही सेड अ यस। और किस्मत का खेल देखो, इट वाजंट द फर्स्ट टाइम संजय दत्त वाज प्लेइंग द रोल ऑफ मुन्ना भाई। इससे पहले भी उन्होंने क्रोध, हम किसी से कम नहीं इन सारी मूवीज में मुन्ना भाई नाम के ही किरदार निभाए थे। फर्क यहाँ इतना था कि उसी नाम मुन्ना भाई के पीछे MBBS लग गया, तो स्टोरी की काया ही पलट गई यार। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि एजुकेशन कैन डू वंडर्स टू आवर लाइव्स। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 12 PM. Mirchi time check.
2: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
3: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
4: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
5: एक बात बताइए, अगर कल सुबह बॉलीवुड उठकर अपनी याददाश्त खो दे तो उसे अपने बारे में सबसे पहले क्या याद आएगा? धुरंधर, या रहमान, या फिर वो गाने जो सालों बाद भी बिना परमिशन के दिमाग में घुस जाते हैं? मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर कभी स्टार्स थे ही नहीं, इट वॉज ऑलवेज मेमोरी. और इस हफ्ते भी कहानी कुछ वैसी ही है. कुछ लोग पुरानी यादों को फिर से बेचने निकले हैं, कुछ लोग नई यादें बना रहे हैं, कुछ लोग नोस्टैल्जिया पे जी रहे हैं, एंड कुछ लोग फ्यूचर लिख रहे हैं. और हम इन दोनों के बीच खड़े हैं, पास्ट और फ्यूचर के बीच, मेमोरी और मैडनेस के बीच. हाय, इट्स मी सुरेन, एंड दिस इज इंडियाज मोस्ट डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन, द मिर्ची टॉप 20. एंड आज के एपिसोड की शुरुआत कर रहा हूं विद अ रहमान सॉन्ग फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, विच इज अ डीसेंट साउंडट्रैक, लेकिन ये रॉक स्टार या हाईवे के लेवल की नहीं है. ये बात I am completely sure of. The songs haven't connected the same way, but here is a nice song, Mascara, जिसे गाया है निलंजना घोष दास्तीदार ने, and it is on number 20.
6: Number 20.

कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया की हर बड़ी चीज थोड़ी सी दीवानगी के साथ ही शुरू होती है। एक ऐसा सपना जिसे देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। पच्चीस साल पहले एक फिल्म आई थी, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा। पहले उसकी याद के बारे में बात करूंगा। मिट्टी उड़ रही थी, धूप सर पर थी, लोग पसीने में भीगे हुए थे और एक पूरा गांव अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये उम्मीद थी, ये जिद थी, ये वो एहसास था कि कभी कभी जिंदगी में एक ही मौका मिलता है और उसी एक मौके पर सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आज भी जब उस फिल्म के सीन्स हमें याद आते हैं तो स्कोर याद आता है, वो ढोल याद आता है, भुवन याद आता है, गौरी याद आती है और सबसे ज्यादा वो फीलिंग याद आती है कि हम किसी फिल्म को नहीं देख रहे थे, हम उस गांव के साथ जी रहे थे। और फिर सोचिए क्या आइडिया था, गांव के लोग, अंग्रेज, 3 घंटे से लंबी ये फिल्म और क्लाइमैक्स में एक क्रिकेट मैच। आज भी ये पिच सुनकर प्रोड्यूसर्स डर जाते हैं, लेकिन आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने उस वक्त डर और कॉमन सेंस दोनों को साइड रख दिया और बना दी लगान। मुझे लगता है लगान की सबसे बड़ी जीत ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत थी

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा
2: मिर्ची
3: इट्स नवीन
2: बोल रहा हूँ.
3: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू उसके लिए क्या करना पड़ेगा
2: वो आपको मुझे बताना होगा.
3: तो मैं अभी बता दूँ.
2: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
3: संजना.
2: संजना किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
3: अपने हस्बैंड का.
2: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
3: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा.
2: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
3: भड़क भी जाते हैं.
2: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
3: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
2: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
3: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
2: हूं. ओके चलिए. हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
3: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
2: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का. मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है.
3: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था.
2: हम तो किसी का ही बनाते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू. थैंक यू.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे 1358

0: वेलकम टू द जंगल, पूरी इंडस्ट्री दिख जाएगी भाई आपको इस फिल्म में। एंड टॉकिंग ऑफ दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री AKA बॉलीवुड, कभी कभी किसी एक फिल्म की कामयाबी पूरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बदल देती है परमानेंटली। धुरंधर के बाद मुझे लगता है कि इंडियन स्पाई जॉनर उसी फेज में है। अब सिर्फ एक्सप्लोजन काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन वॉक्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्टाइलिश फ्रेम्स काफी नहीं है। ऑडियंस को खतरा महसूस होना चाहिए, वो दाव पेच महसूस होने चाहिए, और शायद इसलिए यशराज की फिल्म अल्फा का टीजर उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया जितनी उम्मीद की थी। इट्स गॉट आलिया भट्ट, इट्स गॉट बॉबी देओल, एंड इट इज गॉट शर्वरी। इट्स पार्ट ऑफ द YRFY यूनिवर्स। कागज पर तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन टीजर देखने के बाद मुझे एक ही चीज महसूस हुई, सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत कैलकुलेटेड है, और स्पाई फिल्म्स कैलकुलेशन से नहीं केओस से याद रहती हैं। धुरंधर देखकर लगा था कि यार कुछ भी हो सकता है इस फिल्म में, अल्फा देखकर लगता है सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। और वैसे एक और सवाल है, फिल्म में शर्वरी भी है लेकिन टीजर देखकर तो ऐसा लगा जैसे उनका पासपोर्ट ही कहीं खो गया है। देखते हैं फिल्म क्या करती है, बिकॉज टीजर तो बस पहली झलक होती है। फिलहाल शर्वरी की जब बात चली ही है तो चलिए उनकी दूसरी फिल्म की तरफ। मैं वापस आऊंगा, AR रहमान जब नॉस्टैल्जिया को छू लेते हैं ना तो वो से म्यूजियम पीस नहीं बनाते, उसमें नई जान फूंक देते हैं। इश्क मस्ताना में 1940s के बिग बैंड जैज का रंग है, पंजाबी फोक की मिट्टी है, और मोहित चौहान की आवाज में वो खनक है जो सीधा हिट करती है। इट्स डेब्यूइंग ऑन नंबर 16, दिस इज इश्क मस्ताना by AR रहमान and Irshad Kamil.
1: Number 16.

ये गाना खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता। आप सोचते हो एक और बार सुनूंगा और फिर खुद को चौथी पांचवी बार प्ले करते हुए पकड़ लेते हो। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसका सिंगर राघव चैतन्य, क्योंकि कुछ सिंगर्स सुर में गाते हैं, कुछ सिंगर्स पर्सनालिटी में गाते हैं और राघव दूसरी कैटेगरी में आता है। सारी परतें हटा के सुनो, सिर्फ राघव की आवाज सुनो। पड़े अगर तेरे लिए

0: देखिए कैसे वॉइस को यूज कर रहा है ये लड़का, कभी ब्रीजी है, कभी फ्लर्टेशियस है, कभी ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल है, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। गाना सिर्फ गा नहीं रहा, परफॉर्म कर रहा है, और शायद इसलिए प्रीतम दा बार बार उसकी तरफ लौट रहे हैं। इन एनिमल, इन मेट्रो, इन दिनों, इन कॉकटेल, इनफैक्ट राघव ने तो कई बार प्रीतम दा के गाने कवर भी किए अपने वीडियोस में।
1: इतनी

0: Dude, it sounds so lovely. Pattern साफ नजर आ रहा है. Mirchi.20 पर नंबर 3 पर है तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला, जो कोविड के बाद अक्षय कुमार की सबसे कामयाब फिल्म है. लेकिन हम राघव चैतन्य की इस ट्रेन से उतरने नहीं वाले, क्योंकि माशूका से पहले एक और गाना था जिसने सबको पूछने पर मजबूर कर दिया, यार ये सिंगर कौन है. माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम एक विलन रिटर्न्स. दिल इश्क तो है बट साथ में दर्द भी.
1: पिक ऑफ द वीक.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: इट्स 12:30 PM मिर्ची टाइम चेक
2: ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स आरके ज्वेल्स ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस

0: Hardy Sandhu and Kiran Bajwa have got a hit song to their credit. Wow! And अब जब है जवानी तो इश्क होना है थिएटर्स में एक हफ्ता बिता चुकी है तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका म्यूजिक क्योंकि उस एल्बम में दो गाने ऐसे हैं जो पहले से ही सुपर हिट्स बन चुके थे चुनरी चुनरी एंड देन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो बीवी नंबर वन में था इश्क चांदी है इश्क सोना है सोना बाबा सोना सोना सोना well, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का म्यूजिक एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है आज के कंपोजर्स को शायद लगता है कि लिसनर 3 सेकंड में शायद बोर हो जाएगा इसलिए हर दूसरे सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है गाने में नई बीट नया ड्रॉप नया इफेक्ट नई लेयर और फिर गाना खत्म होने के बाद आपको गाना याद ही नहीं रहता आप जरा ओरिजिनल वाला इश्क सोना है सुनिए
1: इश्क

यार क्या था इस गाने में? कुछ खास नहीं, और शायद वही इसकी खासियत है। मेलोडी को सांस लेने की जगह मिली, हुक को बैठने की जगह मिली। गाना आपका अटेंशन डिमांड नहीं कर रहा था, गाना आपको साथ ले जा रहा था। हर गाना लाउड होकर याद नहीं रहता, कुछ गाने चुप रहकर भी याद हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में एक गाना इतना लाउड है कि उसके सामने सब पीके पड़ रहे हैं। 17 हफ्ते एट द नंबर वन पोजीशन इज नो जोक एंड आई स्टिल फाइंड इट अनबिलीवेबल। और अब तो ओटीटी पर भी हुड़दंग मचा रखा है, मैडनेस नजर आ रही है। दिस इज शरारत बाय मधुवंती बागची, जैस्मिन सैंडलास फ्रॉम धुरंधर, नंबर वन।

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

नचाया है, हंसाया है, रुलाया है, डराया है, धमकाया है, हर तरह से एंटरटेन किया है इस बंदे ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मैं बात कर रही हूँ द वंडर कॉल्ड मिथुन चक्रवर्ती की। और मुझे ना ऐसा लगता है मुझे छोटे होते इन पे ना ऐसा छोटा सा क्रश था, क्योंकि मैं इनकी सारी फिल्में देखती थी भाई, सारी फिल्में, चाहे वो टीवी पे आ रही है, चाहे वो VCR पे चल रही है, चाहे थिएटर, तो चलो उतना तब जाने को मिलता नहीं था, लेकिन आई वुड नॉट मिस मिथुन चक्रवर्ती फिल्म। फिर चाहे वो 80s की जो फिल्में थी ना उनकी, जिसमें वो ऐसे डायलॉग्स होते थे, साला तेरी आपड़ी की तोपड़ी, लोहा, इलाका, गुंडा, गुनाहों का देवता, प्यार का देवता, देन कट टू 90s फिल्म्स लाइक जल्लाद, यमराज, रावण राज, चीता, सारी फिल्में भाई। और उनकी पहली फिल्म मैंने पता है कौन सी देखी थी VCR पे, प्यार झुकता नहीं। उसमें वो जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग सा उनका किरदार होता है, वो जिस तरह से पद्मिनी कोल्हापुरी से उस फिल्म में प्यार करते हैं, बस तभी शायद वो छोटू सा प्यार हो गया था। हाँ, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार। सारे दिमाग
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है? एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लगाया नहीं।
2: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो। कपड़े
1: नहीं
2: मैं कल को
1: फोटो खींचे।
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
1: अरे
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया। मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे।
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
0: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
7: पहले भी मैं तुमसे मिला।
8: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
9: Vishal Mishra.
6: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
10: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
11: to aaye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
10: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
11: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
12: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
13: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
12: Renew?
13: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
12: What better way to celebrate than with something timeless?
13: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

जमीन पर पैर तो जम चुके थे पर आसमान की उड़ान अभी बाकी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ द फिनोमिनन कॉल्ड मिथुन चक्रवर्ती की। 1976 में मृग्या जैसी फिल्म में नेशनल अवार्ड जीत के मिथुन ने कुछ 50 फिल्में की होंगी और उसके बाद आया उनके करियर का पिनिकल, वो शिखर, वो ऊंचाई जिसके लिए वो बने थे, 1982 के इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर डिस्को डांसर। जिन लोगों ने उस टाइम इस फिल्म के सक्सेस को विटनेस किया है ना, वही बता सकते हैं कि वो क्या सेंसेशन, क्या रेवोल्यूशन था। ये पहली इंडियन फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए कमाए थे। क्या होते थे 1982 में 100 करोड़? क्या एशिया, क्या अफ्रीका, क्या यूरोप भी? डिस्को डांसर का जिमी यानी कि मिथुन चक्रवर्ती एक हाउसहोल्ड नेम बन गए थे, खासकर के रशिया में। ही वाज सो पॉपुलर कि एक बार जब मिथुन रशिया गए तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को एक रैली कैंसिल करनी पड़ गई क्योंकि सारी पब्लिक एयरपोर्ट पहुँच गई मिथुन को देखने के लिए। वो शाइनी डिस्को बॉल्स वाले स्टेज पे चमक धमक वाले कपड़े पहन के, सर पे बैंड लगा हुआ, हाथ में माइक, पब्लिक पागल हो गई थी जब डिस्को डांसर के जिमी ने ये पूछा था,

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची योगा क्लास, मिर्ची योगा क्लास।
2: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस्य बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
3: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
4: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
8: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
7: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans. With Charu, only on

अर्ली 80s में पूरा इंडिया डांस डांस हुआ पड़ा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी चीज पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बिकॉज 1982 में मिथुन चक्रवर्ती की इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर डिस्को डांसर ने हाय तौबा मचा के रखी हुई थी। और इसके बाद ना मिथुन दा को थोक में फिल्मों के ऑफर आने लग गए और वो कर भी रहे थे। मैंने उनका एक पुराना इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने 1987 का इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे थे कि वो एक साथ कुछ 30-32 फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट मिथुन दा की फिल्मों का ना उस टाइम पे अपना ही एक अलग यूनिवर्स होता था, उसका बाकी फिल्मों से कोई लेना देना नहीं होता था बिकॉज ये फिल्में आपस में ही कॉम्पिटिशन करती रहती थी। 1989 में मिथुन दा की कुछ 19 फिल्में आई थी, 1.5 फिल्म पर मंथ के हिसाब से लगा लो। एंड लेट मी टेल यू, सारी की सारी फिल्में हिट हो रही थी। एक फिल्म हिट हो रही है, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी, अलग ही इंसेप्शन चल रहा है। चलिए अभी बातों पे ब्रेक, अभी गाना सुनेंगे डिस्को डांसर मूवी का। टाइटल ट्रैक नहीं, वो तो हम सुन चुके हैं, अभी हम वो गाना सुनेंगे जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जब तक मैंने मूवी नहीं देखी थी ना, मुझे लगता था ये गाना वो अपने लवर के लिए गा रहा है। जब मूवी देखी तो पता चला ये गाना वो अपनी मदर के लिए गा रहा है, वो माँ जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसको याद कर रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
8: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
7: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
9: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है.
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

मिथुन चक्रवर्ती ने, जी हमारे प्यारे मिथुन दा ने कुछ 350 फिल्मों में काम किया होगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनके अलग अलग रोल्स देख के ना, उनकी परफॉर्मेंस देख के ऐसा यकीन नहीं होता कि ये सेम बंदा है। अभी 4 बार इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। वो बहुत ही ऑफ बीट नॉन कमर्शियल टाइप की फिल्में हैं वो। फिर फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिले हैं बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। मतलब कितनी वैरायटी, क्या रेंज है बंदे की। 80s में वो किस तरह के थे फिल्मों में, 90s में वो किस तरह के हो गए, और इनके डायलॉग्स अलग ही तरह के आइकॉनिक रहे हैं। 80s में तो भरमार लगा हुआ है, यू नो वो वाले जो डायलॉग्स होते थे, ऐ साला तेरी अपड़ी की तोपड़ी, या तेरी जात का बैदा मारूं, या तेरे नाम का कुत्ता पालूं, या कानून और देवता जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। बट मेरा फेवरेट पता है कौन सा है? जिस फिल्म का ये डायलॉग है उसी फिल्म का एक गाना भी है जो आई एम 100% श्योर आपको पसंद है। मूवी का नाम है गुलामी, डायलॉग है कोई शक, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

आपको पता है एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी को हेमा मालिनी जी की मदर ने एक पार्टी में नोटिस किया था। मिर्ची सुन रहे आप पुराने जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, बिंदिया गोस्वामी जब एक टीनेजर थी तब एक पार्टी में हेमा मालिनी जी की मॉम ने उनको देखा और सोचा कि अरे ये तो बिल्कुल हेमा जैसी दिखती है। तब उन्होंने, हेमा मालिनी जी की मदर ने, बिंदिया गोस्वामी जी को प्रोड्यूसर्स को रेकमेंड करना शुरू किया। तो इनकी फर्स्ट फिल्म थी 1976 की जीवन ज्योति, विच वॉज अ फ्लॉप फिल्म, लेकिन धीरे धीरे उन्हें नोटिस किया जाने लगा। फिल्म्स लाइक खट्टा मीठा, गोलमाल, दादा, शान। एक्चुअली कितनी प्रिटी थी बिंदिया गोस्वामी, मतलब उनके बाल कितने सुंदर थे ना, लंबे लंबे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीज वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे।
3: क्या हो गया
4: सर, मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है। मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया है, क्या कर दिया आपने।
3: क्या हुआ क्या है
4: सर, एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
3: कब दिया था आपने।
4: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
3: क्या प्रॉब्लम क्या है।
4: चंद्रो फोन लेके आ,
3: डिस्प्ले आ रहा है।
4: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार।
3: फोन आ रहे हैं और ओके।
4: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
3: बेल बज रही है।
4: अरे बेल वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है। मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये।
3: अरे आपने लिया कहाँ से था।
4: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
3: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप।
4: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप।
3: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
4: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
3: थोड़ी ना
4: मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
3: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
4: गुब्बारे वाला फोन यार बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
3: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
4: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे। तो ये पहले नहीं बोल सकते थे,
3: फोन थोड़ी ना होते
4: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
3: फोन मत करिए,
4: यहाँ फोन मत करिए यार।
5: अब गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई।
3: हेलो
5: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
3: अरे सर काम का टाइम है,
5: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
3: कुकड़ू को।
5: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Oh no!
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यूर इन गुड हैंड्स। Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

ये तो आपको पता है ना कि 1980 में बिंदिया गोस्वामी एंड विनोद मेहरा इन्होंने चुपके शादी की थी। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसकी मेन वजह ये थी कि विनोद मेहरा साहब का अपनी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स नहीं हुआ था। इस वजह से बहुत सारे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स थे जहाँ पे तीन परिवार जुड़े हुए थे, और इस सब की वजह से चार साल के बाद ही 1984 में ये दोनों अलग हो गए। इसी दौरान बिंदिया गोस्वामी जी जेपी दत्ता साहब से भी मिली और दोनों ने शादी कर ली। उस दौरान बिंदिया गोस्वामी जी ने अपना करियर भी छोड़ दिया था। वैसे काफी साल बाद जेपी दत्ता साहब की जो फिल्में थी, चाहे वो बॉर्डर हो, रेफ्यूजी हो, उसमें उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम किया था बिंदिया गोस्वामी जी ने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
10: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
11: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
10: Renew?
11: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
10: What better way to celebrate than with something timeless?
11: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
12: अब मिर्ची खा।
14: Radio Mirchi, it's hot.
5: It's 2:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम। RK Jewels. Best quality, best price.
15: Purani ji. With Charu, only on.

हिंदी फिल्मों के मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर्स में से एक थे ओम प्रकाश जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप। भाई इनका जन्म 1919 में कोई कहता है जम्मू में हुआ था, कोई कहता है लाहौर में हुआ था, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि इनके फादर के दोनों जगह पे घर थे। खैर बचपन से इनको संगीत, अभिनय, फिल्मों का शौक था। इन्होंने संगीत भी सीखा और शहर में जो नाटक ये सब जो होता था उसमें ये पार्टिसिपेट भी करते थे। और धीरे धीरे इनकी जीवन और करियर की गाड़ी नॉर्थ इंडिया से बॉम्बे पहुंची और फिर इन्होंने अपना एक आइकॉनिक फिल्मी करियर बनाया। क्या क्या किरदार निभाए हैं ओम प्रकाश जी ने भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: क्यों आ रहा?
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: किशोर कुमार के बारे में कहने के लिए कितना कुछ है भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सिर्फ हम लोगों के पास नहीं, पुराने एक्टर्स एक्ट्रेसेस से अगर आप सुने उनके पास भी बहुत कुछ है। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में माला सिन्हा जी ने किशोर दा के बारे में क्या कहा था।
1: सबसे ज्यादा कॉमेडियन और सबसे अच्छा इंसान और सच्ची कॉमेडी अगर सेट पे करता है वो है किशोर कुमार। मैंने उनके साथ काम किया था ना अपना बेवकूफ, और एक पिक्चर किया था मैंने बम्बई का ठग। अरे सेट पे एक मिनट वो चुप नहीं बैठने का, ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर ना स्प्रिंग पड़ा हुआ है, चाबी भर दी और वो उछल रहे। और हर एक डायरेक्टर का नकल, हर एक का नकल, एक मिनट चुप नहीं। वो थे कॉमेडियन, स्क्रीन में भी कॉमेडियन, जो तो आपको स्क्रीन में दिखता करते हुए ऑफ टाइम में भी करते, सबको हंसाते रहना सेट पे।
0: इसी बात पे किशोर दा का एक फन सॉन्ग सुन लेते पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिड 70s में पब्लिक ने एंग्री यंग मैन वाले रोल्स पसंद करने शुरू कर दिए और इसीलिए सॉफ्ट रोमांटिक इमोशनल हीरो वाले रोल्स आउटडेटेड हो गए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसीलिए राजेश खन्ना का सुपरस्टार का टाइटल अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। अच्छा, अमिताभ बच्चन की सुपरस्टारडम के बारे में राजेश खन्ना जी से एक बार जब पूछा गया था तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: जो जिसकी किस्मत है और जो जिसका काम है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है, डेस्टिनी है आपकी। और मैं तो ये चाहूंगा कि भाई जब उन्होंने आनंद में मेरे से काम मेरे साथ शुरू किया और आज इस मुकाम पे पहुंचे, मैं तो बहुत बहुत ही उनको मुबारकबाद दूंगा और आई बी वेरी हैप्पी और आई बी एनवींग हिम कि इस मुकाम पर पहुंचना और ये कामयाबी हासिल करना, ये बहुत गर्व की बात है, उन्हीं के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी और जनता के लिए भी।
0: अच्छा, राजेश खन्ना अपने सुपरस्टार टाइटल के बारे में क्या सोचते थे, सुनिए उन्होंने एक बार क्या शेयर किया था।
1: नहीं जी, स्टार तो नहीं, मैं तो एक्टर हूँ, एक्टर था, एक्टर हूँ और एक्टर रहूँगा। स्टार बीच में मैं कहीं बन गया था, जिसे सुपरस्टार कहते हैं, स्टार जो भी है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक्टर को मैं जानता हूँ, था, हूँ और हमेशा रहूँगा।
0: चलिए अब ऐसी फिल्म का गाना सुनते हैं जिसमें इन दोनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि यस, इस टाइटल के ये दोनों वाकई में हकदार थे। आनंद फिल्म का गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची।
1: नवीद
0: बोल रहा हूँ।
1: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: वो आपको मुझे बताना होगा।
1: तो मैं अभी बता दूँ?
0: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
1: संजना।
0: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
1: अपने हस्बैंड का।
0: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
1: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
0: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूं फिर मुर्गा बनाऊं। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
1: हाँ, भड़क भी जाते हैं।
0: अरे बाप रे। तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
1: अब्यूजिंग वे में। थोड़ा
0: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
1: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूं।
0: ओके चलिए।
2: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
1: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
2: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी?
1: मुझे मना कर एक बार, बेकार में दिमाग खा रखा है।
2: अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
0: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है।
1: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
0: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किस दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
7: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
8: पहले भी मैं तुमसे मिला।
9: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
10: विशाल मिश्रा,
7: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

भाई 1989 में जब मैंने प्यार किया फिल्म आई थी, इसने अपना एक छोटा सा रिकॉर्ड बना लिया था फिल्म फेयर अवार्ड्स का। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 13 नॉमिनेशंस में से इसे 7 अवार्ड मिले थे, बेस्ट फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, बेस्ट डेब्यू एक्टर, बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस। और ये रिकॉर्ड फिर तोड़ा DDLJ ने 1995 में 10 अवार्ड जीतकर। चलिए, अवार्ड का आना जाना तो लगा रहता है, मेन बात है दिल जीतना। और मैंने प्यार किया फिल्म ने ये काम बखूबी कर लिया था सबसे दोस्ती करके। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: It's 3:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Mirchi yoga class. Mirchi yoga class.
3: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
4: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
9: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
10: एब्सोल्युटली, एंड व्हाइल वी आर एट इट, आई शुड रिन्यू सम ऑफ माय ओल्ड ज्वेलरी टू।
9: Renew?
10: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
9: What better way to celebrate than with something timeless?
10: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only

0: सो रिसेंटली मैंने मूवी देखी 1972 की जोरू का गुलाम। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में है काका, राजेश खन्ना एंड नंदा, और ओम प्रकाश साहब भी हैं। सो बेसिकली ओम प्रकाश साहब बहुत रईस होते हैं, उनको अपने पैसे पे घमंड होता है। उनकी बेटी नंदा, इनको प्यार हो जाता है राजेश खन्ना साहब से, जो एक पेंटर होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, और ओम प्रकाश जी की मर्जी के खिलाफ ये उनसे शादी कर लेती है नंदा। अब सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बनते हैं कि राजेश खन्ना साहब को घर में नौकर बनके जोरू का गुलाम बनके रहना पड़ता है। उस वजह से क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, क्या क्या गूफ अप होते हैं, इज सो मच फन। राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग, ओम प्रकाश साहब की एक्टिंग, टू गुड।
1: इसी बात पर काका जी की फिल्म का ही गाना सुन लेते हैं,
0: पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab, mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

दोस्तों मंडे का मूड भी ना कभी कभी बिल्कुल बॉलीवुड कैरेक्टर जैसा लगता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। तो जी हाँ, कभी कभी लगता है कि हम रणबीर कपूर फ्रॉम वेकअप सिड है, यानी थोड़े लॉस्ट, थोड़े स्लीपी। और कभी कभी लगता है कि कल होना हो के अमन है, फुल ऑन स्माइल के साथ, रेडी टू टेक द डे ऑन। वैसे यार मंडे का ना रियल ट्विस्ट ये है कि आप डिसाइड करते हो कि आज का रोल क्या होगा, स्लो स्टार्ट होगा या फुल फिल्मी एनर्जी। तो आज का सीन सिंपल है, अपने आप को हीरो मोड में डालो तो बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप बजने लगेगा। और मुझे जरूर बताना कि आपका मंडे कौन सा बॉलीवुड कैरेक्टर जैसा होता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मेरा जो मंडे मोड है ना, उसके लिए जो परफेक्ट गाना है वो मैं अभी आपके लिए बजाने वाली हूँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस लगाया नहीं।
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
2: नहीं।
3: मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार।
2: गायब हो जाएगी
3: शेरवानी, तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: नहीं सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
8: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
9: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
8: Renew?
9: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
8: What better way to celebrate than with something timeless?
9: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
11: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस, अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
12: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
13: અમેરિકામાં શ્રેષ્ઠ ઇન્ડોર અને આઉટડોર કેટરિંગ સેવા, એન્ગેજમેન્ટ, લગ્ન, બેબી શાવર, જન્મદિવસ પાર્ટી અને એડલ્ટ ડે કેર, તમારા સ્થળ પર લાઇવ કુકિંગની સુવિધા। અમે અમેરિકામાં તાજું ફરસાન અને મીઠાઈ બનાવીએ છીએ। અમે ન્યૂ જર્સી અને ન્યૂયોર્કમાં ડિલિવરી સાથે ટિફિન સેવા પણ આપીએ છીએ। આજે જ બોમ્બે એક્સપ્રેસ અને વૈષ્ણવ કેટરર્સને કોલ કરો એટ 732-986-6241 or visit 2849 Woodbridge Avenue, Edison, New Jersey.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab, mirchi kha.
1: Radio Mirchi, it's hot.

एनीटाइम। जिंदगी का ब्रेकअप मोड ऑन हो या मेल्ट डाउन, एक रेट्रो बीट लगाओ ना तो लाइफ फिर से किक स्टार्ट हो जाती है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, ये एक जिंदगी काफी नहीं है मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये ट्रैक सुनते ही यार ऐसा लगता है जैसे आशा भोसले का एरा वापस आ चुका है। बेस लाइन रेट्रो, लिरिक्स रेबेलियस और वॉइस में फुल ऑन ड्रामा। वैसे ये गाना गाया है अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तवा ने और इस गाने में वो सास डाला है जो कहता है कि यार प्यार गया तो क्या हुआ, मैं तो स्टिल मैं हूँ। वैसे डायरेक्टर वसंत बाला ने सेट पर बोला था कि ठीक जैसे हेलन डांस करती है वैसे ही हुमा कुरेशी को डांस करना है, और कहीं ना कहीं हुमा कुरेशी ने अपने ग्लिटरी ड्रेस और ग्लिटरी अवतार में हेलन को मैच करने की कोशिश की है। वैसे आपने अगर ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए आपके लिए मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
12: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
13: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
14: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
15: दोस्तों, कुछ लव सॉन्ग सुनते ही लगता है कि ये गाना लिखा नहीं गया है, किसी ने ना बस दिल की बात रिकॉर्ड कर दी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और न्यू जर्सी के शाम में अगर कोई गाना प्यार की सिंप्लिसिटी को कैप्चर करता है ना, तो वो है कैसे हुआ फ्रॉम द एल्बम कबीर सिंह। और यार, कैसे हुआ सुनते वक्त ना मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इसके जो कंपोजर है विशाल मिश्रा, उनको शायद द ग्रैंड रोमांस से ज्यादा छोटी छोटी फीलिंग्स पसंद आती होंगी, क्योंकि इस गाने में ना ज्यादा ड्रामेटिक डिक्लेरेशंस हैं, ना ओवर द टॉप अरेंजमेंट्स हैं, बस एक सिंपल मेलोडी है जो यार सीधा दिल तक पहुंचती है। क्योंकि विशाल मिश्रा ने इस गाने को कंपोज भी किया है, लिखा भी है और खुद गाया भी है, और शायद इसीलिए ये गाना इतना ऑर्गेनिक लगता है। वैसे कबीर सिंह के इंटेंस वर्ल्ड में ये ट्रैक ना एक सॉफ्ट सी हार्टबीट की तरह काम करता है। और कभी कभी ना सिंप्लिसिटी सबसे मुश्किल चीज होती है, और ये वो गाना है जो उसका एब्सोल्यूट प्रूफ है। क्योंकि यार, विशाल मिश्रा की मेलोडीज में ना एक खास बात जरूर होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। पहली बार सुनो तो लगता है कि जैसे गाना ना पहले से ही दिल में था, और शायद इसीलिए कैसे हुआ आज भी लोग गाते हैं, चाहे उन्हें गाना सीखा है या नहीं सीखा है, लेकिन दिल से गुनगुनाते जरूर है। तो दोस्तों, आप भी बताना कि आपकी लाइफ का वो कैसे हुआ मोमेंट क्या था जब प्यार ने बिना नॉक किए एंट्री मार दी थी, और क्या तब ये गाना बैकग्राउंड में चला था। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं विशाल मिश्रा की कंपोजिशन कैसे हुआ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants, and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और आज का हंगामा आ रहा है फिल्म अग्निपथ के चिकनी चमेली गाने से। यार वैसे तो इस गाने में स्क्रीन पे कटरीना कैफ का रॉ रस्टिक और हाई एनर्जी डांस तो है ही, लेकिन पर्दे के पीछे गणेश आचार्य जी जो कि इस गाने के कोरियोग्राफर है, उन्होंने बताया था कि कटरीना ने इस गाने के लिए लगातार 8 दिन रिहर्सल किए थे और कभी कभी 8 to 9 hours एट स्ट्रेच। तो सोचिए दोस्तों, ये कोई स्मूथ बॉलरूम नंबर नहीं था। फास्ट बीट्स, इंटेंस एक्सप्रेशन, देसी फुटवर्क और फुल स्टैमिना का टेस्ट था। और स्क्रीन पे कैटरीना एकदम फायर तो लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे बॉडी को लिटरली कमांड देना पड़ रहा था कि बस थोड़ा और, एक टेक और। और जी हाँ, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, करण जौहर, सभी लोग उनकी परफॉर्मेंस देख के काफ़ी इंप्रेस हुए थे। और ना ही सिर्फ वो, पूरी ऑडियंस काफ़ी इंप्रेस हुई थी, क्योंकि कभी कभी ना बॉलीवुड में एक हिट हुक स्टेप के पीछे पूरा बूट कैंप छुपा होता है और यही गाना वो साबित करता है। वैसे ये वो गाना था जिसमें यार कैटरीना और ऋतिक थे और पहली बार ऐसा था कि ऋतिक नहीं नाच रहे थे और कैटरीना नाच रही थी और हम सब कैटरीना को देख रहे थे। तो जी हाँ, ये थी पर्दे के पीछे की वो मजेदार दास्ता फॉर द सॉन्ग चिकनी चमेली, और वही सुनते हैं अभी। लेकिन आप भी मुझे बताना कि ऐसा कौन सा हिट गाना है जिसके पर्दे के पीछे की बातें आपको भी जाननी है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और पंजाबी तड़का ढोल एनर्जी यानी नगाड़ा नगाड़ा। जी हाँ, एक ऐसा सेलिब्रेशन एंथम है फ्रॉम द वन ऑफ द फेमस एल्बम्स जब वी मेट। मतलब यार, ये एक ऐसा एल्बम है ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और शाहिद ने जब इस गाने की शूटिंग की थी ना, तो उस टाइम पे ना उन्होंने अपने शूज के अंदर एक कॉटन रखवाई थी, क्योंकि स्टेप्स इतने ज़्यादा विगरस थे और इस गाने की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उनके पैर इतने ज़्यादा गर्म हो जाते थे कि बस उनको लगता था कि बस अब एक कॉटन रख दो ना तो एकदम राहत मिल जाती थी, क्योंकि गाने का बाउंस, गाने का ठहराव, गाने का फनी कुछ ऐसा था। वैसे यार, ये गाना जो सोनू निगम की आवाज़ में गाया गया है इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ जब वी मेट, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि आपका जब वी मेट का फेवरेट गाना कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। लेकिन इस शाम की शुरुआत करते हैं विद नगाड़ा नगाड़ा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Gabana. Burga, burga. La viva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्र फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख। ये क्या है यार ये?
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: हमने थोड़ी ना मैन्युफैक्चर
3: किया, मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है,
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
9: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी proudly present an enchanting musical concert by classically trained Dr. Meenal Mategaonkar का एक timeless musical concert, जिनका साथ देंगे renowned तबला artist अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
8: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
10: अभी न जाओ छोड़ कर।
9: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
13: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
17: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
18: विशाल मिश्रा,
16: अमित जेटी ऑफ साई USA Inc. presents A Night Larger Than Life, विशाल मिश्रा's पागलपन टूर, फ्राइडे जून 26th, हार्ड रॉक लाइव, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
19: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
0: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.
20: दोस्तों, कितने लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम कोई एलिवेटर नहीं बल्कि एक लैडर होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और ऐसे लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम एक रात का सपना नहीं होता, वो सुबह सुबह आंख खोल के देखा गया एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। हर सपना एक साइलेंट चेकलिस्ट होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक जगह जिसे आप घर कह सको। और जब ये सपना रियल होने लगता है ना, तब पता चलता है कि ये लक का नहीं, प्लानिंग का गेम है। और इसी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
21: गुड इवनिंग मिचेल, दिस इज योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। होप यू ऑल हैव अ वंडरफुल वीकेंड। होम बायर्स, वेदर हैज बीन गॉर्जियस, नो एक्सक्यूजेस। एंड टुडे द यूएस मार्केट सोर आफ्टर यूएस एंड ईरान रीच सीज फायर डील। इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ होम इन द नियर फ्यूचर, देयर इज फाइनली सम गुड न्यूज फॉर होम बायर्स। Mortgage rates are flat. The market is finally correcting a bit. The Federal Reserve has been raising interest rates to curb inflation, and this makes it more expensive to purchase a home. There are fewer buyers into the market than before, so some sellers have to lower their prices to meet their demand. Friends, buying a dream home advice is free. Pre-approval is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate 6.125%, 20-year fixed mortgage rate 5.875%, 15-year fixed mortgage rate 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com, and it is lionmtg.com. I always mention we offer great mortgage rates. Also, to those who own investment properties or looking to buy investment properties, please call us to find out how aggressively we are priced. We are licensed to do business in New Jersey, New York, and Pennsylvania. But if you are buying it under an LLC, an investment property, we can do in the entire country of United States. We offer conventional loans, FHA loans, DSCR loans, bank statement loans, great rates on jumbo loans. We also offer zero closing cost refinance option. So friends, buying your dream home or refinancing, please call Lion Mortgage today at 732-339-3155, 732-339-3155. With that, drive safe everybody. Have a wonderful evening. Thank you. Bye-bye.
22: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey. Have a funky time.
2: कुछ गाने शादी में बज जाते हैं और फिर डांस फ्लोर की हिस्ट्री बन जाते हैं। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। जब वी मेट के एल्बम के बारे में बात हो रही है और इसका गाना मौजा यार कभी भी सुन लो मौज ही लेकर आता है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैक है ना जहाँ मीका सिंह की वॉइस ने लिटरली पार्टी को इग्नाइट कर दिया था। और एक बहुत ही मस्त बात है इस गाने की, मतलब इसका जो हुक स्टेप है उसको कोरियोग्राफर ने ऑन द स्पॉट क्रिएट किया था, क्योंकि यार शाहिद कपूर और हमारे जो करीना कपूर खान है वो इतने ज़्यादा हाइपर फन मोड में थे कि यार उनको देख के उन्होंने जो ओरिजिनल कोरियोग्राफी थी वो कैंसिल करके नई कोरियोग्राफी ऑन द स्पॉट बनाई और उनके कैरेक्टर्स को मैच करने जैसी जो उनकी एनर्जी थी उस एनर्जी को मैच करने जैसी उन्होंने कोरियोग्राफी बनाई थी। और तभी तो यार ये गाना 2007 से लेकर आज तक हर ढोलकी, हर संगीत, हर आफ्टर पार्टी का VIP मेंबर बन चुका है। जैसे क्या आपने मोजा मोजा पे कभी डांस किया? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं मोजा मोजा फ्रॉम वन ऑफ द फेमस एल्बम्स जब वी मेट। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जो आपको बहुत पसंद है और जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल सुनते हैं जब वी मेट का मजा ही मजा राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
5: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
4: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की टाइम।
1: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बात हो रही है ऐसे एल्बम की जो 2007 में रिलीज हुई थी, जब वी मेट, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और फिलहाल बात हो रही है एक ऐसे गाने की जो आपको सीधा मनाली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जी हाँ, श्रेया घोषाल की आवाज में ये इश्क हाय, ये सुनते ही लगता है कि मनाली की सारे रोड्स सडनली म्यूजिकल हो चुके हैं। कि श्रेया घोषाल की प्लेफुल वॉइस के साथ शूटिंग के सेट्स पर भी एक्चुअल ढोलक वाले लोकल्स ज्वाइन हो गए थे, और इसीलिए इस गाने में एक रॉ पहाड़ी एनर्जी है। वैसे यार करीना को तो वन टेक गीत कहा जाता ही है, लेकिन इस सॉन्ग को सुनने के बाद ना हर एक इंसान के दिल में, हर एक लड़की के दिल में गीत डांस जरूर करती है। वैसे कि आपको भी ये गाना पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार इतने सारे हिट एल्बम्स है और ये जो हिट एल्बम है जब वी मेट, उसके इतने सारे खूबसूरत गाने हैं। तो ऐसा भी कोई गाना है जो आप यहाँ पर प्ले करवाना चाहते हो तो जल्दी से मुझे बताना। और फिलहाल बजाते हैं ये इश्क हाय राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's go on donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है जब वी मेट के उस ऐतिहासिक एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना बहुत अमेजिंग है, लेकिन इस गाने की एक मेलोडी ऐसी है जो शब्दों के बिना भी ना एक कहानी सुना देती है। जी हाँ, बात हो रही है जब वी मेट के आओगे जब तुम गाने की। इतना ब्यूटिफुल सा गाना है ये, और ये गाना ना सिर्फ एक गाना नहीं लगता बल्कि एक दुआ जैसा लगता है। उस्ताद राशिद खान की क्लासिकल डेप्थ ने इस ट्रैक को प्योर सिनेमा का हार्टबीट बना दिया। वैसे शूटिंग के दौरान जब करीना बारिश में खड़ी थी तब क्रू बोलती थी कि यार एक मोमेंट ऐसा आया था जहां बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ हो गया था, पर तब हवा की आवाज मेलोडी बन गई थी और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक का फील दे रही थी, और इसी के दौरान उन्होंने शूटिंग की थी। तभी तो यार लोग कहते हैं कि ये गाना किसी के वापस आने का सबसे खूबसूरत तरीका है, किसी को याद करने का सबसे खूबसूरत तरीका है। तो चलिए, अगर आपके भी अंगना में फूल खिलते हैं जब कोई खास आपके अंगना में आता है, तो आपके लिए ये अगला गाना आओगे जब तुम साजना फ्रॉम जब वी मेट। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो जब वी मेट का आपका फेवरेट गाना कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और आपके लिए जब वी मेट का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Burga, burga. La fiesta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Mirchi.
4: It's Navid.
3: बोल रहा हूँ.
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप वो लूप के लिए क्या करना पड़ेगा?
3: वो आपको मुझे बताना होगा.
4: तो मैं अभी बता दूँ.
3: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
4: संजना.
3: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का.
3: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा.
3: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं.
3: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूं.
3: ओके चलिए.
5: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
5: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का.
3: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है. रेडियो मिर्ची पे.
4: गॉड. मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था.
3: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किस दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकुड़ुकू. थैंक यू.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल.
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
11: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णो केटरर्स, अमेरिका में सबसे बेहतरीन इंडोर और आउटडोर केटरिंग सेवा. सगाई, शादी, बेबी शावर, जन्मदिन पार्टियां और एडल्ट डे केयर. आपके स्थान पर लाइव कुकिंग की सुविधा. हम अमेरिका में ताजा फरसान और मिठाइयां बनाते हैं. हम न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में सोमवार से शनिवार तक डिलीवरी के साथ टिफिन सेवा भी प्रदान करते हैं. आज ही बॉम्बे एक्सप्रेस और वैष्णो केटरर्स को कॉल करें 7329866241 और विजिट 2849 वुडब्रिज एवेन्यू, एडिसन, न्यू जर्सी.
12: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं.
13: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मटेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी.
12: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले.
14: अभी न जाओ छोड़ कर.
13: 28 June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
15: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
16: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
15: Renew?
16: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
15: What better way to celebrate than with something timeless?
16: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

करियर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जॉब नहीं होते, लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए, मॉर्निंग कम्यूट की जगह एक काम, कप ऑफ चाय, और एक ऐसा काम वो भी ऐसे फील्ड में जहाँ ग्रोथ भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी। और आजकल लोग करियर चूज करते वक्त ना सिर्फ सैलरी ही नहीं देखते, वर्क लाइफ बैलेंस भी देख रहे हैं। और कई सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे करियर ऑप्शंस पॉसिबल है, स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो आज ही कंसिडर कीजिए अ करियर एज अ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट विथ एम्स एजुकेशन, बिकॉज विथ जस्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग यू कैन गेट स्टार्टेड इन दिस एवर ग्रोइंग फील्ड। प्रोग्राम फुल्ली ऑनलाइन अवेलेबल है और अभी वो लोग आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। फॉर मोर गाइडेंस कॉल 9082220002, 9082220002, या फिर विजिट कीजिए aimseducation.edu फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग करियर ऑफ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट, जहां घर का सुकून भी है और काम करने का मजा भी। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
8: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
12: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
13: विशाल मिश्रा
14: Jetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
17: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
18: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
17: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
17: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

Funky Time. एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शमशाद लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और एक ऐसे ही एल्बम के बारे में बात हो रही है जब वी मेट। जी हाँ, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और आज इसी एल्बम के एक गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम इजलिन। प्रिया जी कहती है इजलिन से, इस एल्बम का जो एक गाना है तुमसे, ही मोहित चौहान की आवाज में, वो बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है। क्योंकि जब भी वो लिंकन पार्क की शांति में होती है, उनके हाथ में गरम कोका होता है, तब बैकग्राउंड में वो यही गाना सुनती है तुमसे ही। क्योंकि यार उसमें एक लाइन है कि मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही। और वो अपने हस्बैंड को ये जो लाइन है वो डेडिकेट करना चाहती है। बड़ा ही फिल्मी मोमेंट है। जी हाँ प्रिया जी। और दोस्तों वैसे एक बहुत ही खास बात इस गाने की, मतलब यार जब मोहित चौहान की आवाज़ में ये गाना गाया गया था, एक हल्की सी हंसी जो उन्होंने लाई थी इस गाने में, जैसे कि कोई बहुत ही शांति से किसी का नाम ले रहा हो। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे मोहित चौहान जी माइक से थोड़ा दूर हो गए थे ताकि वॉइस में वॉकिंग इन द रेन वाली फीलिंग आ जाए। और शायद इसीलिए ये गाना लगता है कि यार इवन दो तुम तन्हा कहीं चल रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा वो अपना साथ ही चल रहा है। तो आप भी बताइए क्या आपको ये गाना पसंद है, और ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार उस एल्बम का हर एक गाना बजाएंगे आपके लिए। और हाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianikaacademy.com.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
10: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
11: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

है कोई पुरानी डायरी का एक बहुत ही खूबसूरत सा पन्ना खुल गया हो और एक सुंदर सी कहानी इस गाने से जुड़ी है। मतलब इस गाने में जो हमिंग है, एक बहुत ही हल्की सी हमिंग है जो प्रीतम ने बैकग्राउंड में डाली थी, वो दरअसल गाने के कंपोजिशन में कभी थी ही नहीं। वो एक्चुअली ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन थी और एक पल में ही वो बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग इस गाने में वो जुड़ गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्ट हमिंग। और शायद इसीलिए ये गाना सुनते ही ऐसा महसूस होता है जैसे मेमोरीज खुद चलकर अपने पास आ रही हो। और इस गाने में एक बहुत ही खूबसूरत सी नरमी, एक बहुत ही शराफत और एक नज़ाकत है जो इस शाम को भी और खूबसूरत बना दे। तो चलिए इस खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बनाते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो कौन सी ऐसी अनकही बात है जो आपके दिल में रह गई है और कभी किसी से आपने कही नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और आज की ये जो शाम है उन्हीं अनकही लम्हों के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही मूड हल्का कर देते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और ऐसा ही फील आ रहा है एक नए गाने से, मस्करा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। इसका म्यूजिक दिया है एआर रहमान ने, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने और गाने को आवाज दी है वेदांग रैना और निलंजना घोष ने। ऑनेस्टली इस गाने में ना कोई हैवी हार्ट ब्रेक, ना कोई इंटेंस ड्रामा है, इसका चार्म ही उसकी प्लेफुलनेस है, थोड़ी सी शरारत, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला कॉन्फिडेंस और वो फीलिंग जब किसी की एक स्माइल ना पूरे दिन को अमेजिंग बना देती है। और जी हाँ, मस्करा टाइटल भी बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्योंकि यार गाना सुनते वक्त लगता है कि जैसे कि किसी की आंखों की तारीफ हो रही हो, लेकिन वो कॉलेज वाली टीजिंग, वो नजरों वाली कॉन्वर्जेशन और वो एक्साइटमेंट जब किसी को देखते ही ना मूड ऑटोमेटिकली बन जाए, ना कि कोई पोएटिक हैवी लाइन से। ये जो म्यूजिक है वो रहमान सर का है, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम रहमान सर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ग्रैंड मेलोडीज या सोलफुल ट्रैक्स याद आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने गाने को बहुत ही लाइट और ब्रीजी रखा है। इरशाद कामिल के लिरिक्स और भी ज़्यादा मस्ती और प्यारा बना देते हैं इस गाने को। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि गाना खुद को बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। तो आजकल के इतने सारे रोमांटिक्स ट्रैक है जो यार इमोशंस में बिल्कुल डुबा देते हैं, लेकिन मस्करा में एक अलग ही फ्रेशनेस है। ऐसा गाना जो ड्राइव पर भी चले, फ्रेंड्स के साथ भी चले और रैंडम स्माइल भी दे जाए। तो ऑनेस्टली दोस्तों, कभी कभी ना प्लेलिस्ट को भी ऐसे गाने की जरूरत होती है जो दिल को हैवी नहीं, हैप्पी कर दे। तो आज आपके लिए ये गाना बजाते हैं, लेकिन आप भी मुझे बताइए विच इज दैट सॉन्ग जिसको सुनते ही आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI और बजाते हैं वो गाने यहाँ पर। फिलहाल आपके लिए मस्करा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virba, la burga. Milci, burga. हेलो
2: दिमाग खराब कर रखा है रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई।
1: हाँ जी
2: यार कमाल कर दिया आपने जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी क्या हो गया फोटो में।
2: अरे फोटो आकर देख यार यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है सबके फोटो अजीब से आए यार सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है सतीश चंद का एक बटन है उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ मतलब मैं पागल हूँ। आपने एल्बम देखी है एल्बम देखी है
1: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर बेहतरीन आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार तूने किया क्या ये
1: किसी का
2: कपड़े गायब है एक आदमी का मैं खड़ा हूँ अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं
1: लेंस कोई लगाया नहीं।
2: क्या कौन सा लेंस लगाया है एक तो बता ये बदमाशी करते हो कपड़े
1: गायब
2: नहीं नहीं नहीं मैं कल को
1: फोटो खींचे
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से मैंने शेरवानी पहन रखी थी शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
1: नहीं सर शेरवानी गायब नहीं है बहुत अच्छे फोटो है।
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे।
1: नहीं साहब देखिए केस वेस की बात मत कीजिए इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
1: हैं। सर क्या बात सुन के बनाया है
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया मेरा बेटा खड़ा है कपड़े नहीं है बहू उसका चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है वो खड़ा है जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम ऐसी कोई बात नहीं
2: यार इतना बुरा लग रहा है हर आदमी के प्लेट में हर आदमी के हाथ में प्लेट है कपड़े है भी
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे आप उसको सही करिए यार
1: सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए
2: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है
1: कहाँ होता है बताइए।
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
12: पहले भी मैं
13: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नन अदर देन विशाल मिश्रा।
14: विशाल मिश्रा
15: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ विशाल मिश्रा'स पागलपन टूर फ्राइडे जून 26th हार्ड रॉक लाइव ईटेस अरीना अटलांटिक सिटी। बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com.
16: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab, mirchi kha.
0: Radio Mirchi, it's hot.
9: मिर्ची फ्रेश माल
2: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
2: दोस्तों आज का ऑडियंस सिंपल नहीं है, ट्रेलर देखते ही रिव्यू रेडी होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और इसीलिए आज बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एक्सपेक्टेशन वर्सेस डिलीवरी। मतलब हमने देखा है बिग बजट होने से फिल्म हिट नहीं होने वाली या फिर छोटी फिल्म भी फ्लॉप नहीं होने वाली। ऑडियंस तो अब स्टोरी देखते हैं, ऑथेंटिसिटी फील करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं इज इट वर्थ माई टाइम टू गो टू द थिएटर और नॉट। और इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी मूवी हो, कितने भी बड़े नाम हो, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, सिर्फ बड़ा मत बनाओ, दिल तक पहुंचाओ, यही ऑडियंस का कहना है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपको क्या लगता है बॉलीवुड को अब क्या इंप्रूव करना चाहिए, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, कास्टिंग या मार्केटिंग। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
9: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
10: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
9: Renew?
10: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
9: What better way to celebrate than with something timeless?
10: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

दोस्तों ओटीटी का भी ना एक हिडन बेनिफिट है डिस्कवरीज। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बस रैंडम स्क्रॉल कर रहे होते हो और एक ऐसा शो मिल जाता है जिसका नाम पहले कभी नहीं सुना होता, और फिर वो शो इतना एंगेजिंग होता है कि सडनली आप उसके फैन बन जाते हो। और पहले एंटरटेनमेंट लिमिटेड था, जो थिएटर्स पे आया वही देखो, अब दुनिया भर की स्टोरीज एक क्लिक पे अवेलेबल है। और शायद इसीलिए आजकल कॉन्वर्सेशंस भी इंटरेस्टिंग हो गई है, कोरियन शोज, स्पैनिश थ्रिलर्स, बॉलीवुड ड्रामास, सब एक ही प्लेलिस्ट में। तो आप भी बताना कि आपने लास्ट कौन सा शो देखा। टेल मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।